0: Dr. Manisha Koirala and Dr. Ram Madhav. Diplomacy, Commerce, Security, Infrastructure, Tourism, Soft Power. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders, The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal. New Rules of Engagement. Ambitions Crossing Borders. Voices Refusing to Wait Their Turn. India is Chasing Years. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters. The front lines of Kargil.
1: The political row over Vande Mataram is intensifying, with the Congress and the BJP locked in a war of words. Congress's decision to sing only first two stanzas at its events has drawn sharp BJP criticism. The Home Minister has slammed the Congress for the decision, while the Defence Minister, Rajnath Singh, has called it a grave matter of constitutional concern. Congress leaders are defending this move, citing the 1937 resolution. The Karnataka Home Minister, Priyank Kharge, had said that in 1937, Gandhi, Patel, Nehru, Netaji Bose and even Tagore deliberated on which portions of Vande Mataram should be sung publicly and why. Meanwhile, the Modi government is taking the full redemption to university campuses. Here are some political reactions that came throughout the day.
2: दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद भी देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया. जन भावनाओं को देखते हुए संसद में उसका गान तो होता था, सब खड़े भी होते थे, मगर मेरे जैसे कई लोगों के हृदय में एक दुख का भाव भी होता था कि आजादी के बाद भी वंदे मातरम पूरा गा नहीं सकते. मित्रों, गृह मंत्रालय ने एक विधेयक संसद में पारित कराया और पूरे वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया, और यह ऐतिहासिक निर्णय.
3: कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम का सम्मान करने से औपचारिक रूप से न केवल इनकार करना बल्कि सीधे सीधे विरोध करना अत्यंत दुर्भाग्यजनक और संवैधानिक दृष्टि से बहुत गंभीर विषय है. भारत के संविधान के अनुसार संसद देश का सर्वोच्च संस्थान है और संसद से पारित कोई भी कानून हर व्यक्ति के लिए बाध्यकारी है. यदि कोई इसे मानने से मना करता है तो निश्चित रूप से संविधान के प्रति उसकी निष्ठा संदेह के घेरे में आ जाती है, और यदि राष्ट्रगीत का सम्मान करने से कोई मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान स्वाभाविक रूप से लग जाता है. वंदे मातरम का विरोध करके कांग्रेस ने अपने नासमझी भरे खतरनाक इरादों को देश के सामने बता दिया है.
4: 1937 के अधिवेशन में जब इसको शामिल किया गया, ये गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह पर शामिल किया गया. सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको चिट्ठी लिखकर सलाह मांगी और उन्होंने सलाह के ऊपर इसको शामिल कराया, और उन्होंने ही उसमें से जितना पार्ट था वो तय किया था. सरदार पटेल भी उस अधिवेशन में थे, तो उनके बारे में इनकी क्या राय है? क्योंकि बाकी लोगों के बारे में तो ये बोलते रहते हैं, उनके बारे में बताएं क्या राय है. हम तो अपने पुरखों की विरासत को लेकर चल रहे हैं, इनको तो नया नया प्रेम जागा है. और जिस मुस्लिम तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे उस समय.
5: कांग्रेस से 1937 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, ऐसे तमाम लोग मौजूद थे, और जिन्होंने ये तय किया था कि सिर्फ दो स्टेंजा ही पढ़ा जाएगा उसका. तो इसलिए उस ये हम लोग ने तय किया कल वर्किंग कमेटी में, कांग्रेस अपने कार्यक्रम में जो परंपरा हमारी चली आ रही है 90 सालों से, हम उस परंपरा के अनुसार हम इस गीत को गाएंगे.
6: हमारे पूर्वजों ने वंदे मातरम गाते गाते दम तोड़ दिए थे, आप लोग कहाँ थे? इतने साल आप लोग भी यही गाना गाए थे,

0: 12 साल से आप हुकूमत में बैठे, आपने भी यही गाना गाए थे, रातों रात आप याद आ गए। जो आदमी लोग पार्लियामेंट में आ नहीं सकते, पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे सकते, बच्चों पर आपकी ताकत लाद के आप उनको पिटवाते हैं, आप हमें समझा रहे हैं कि हम क्या चीज है।
1: And amid fierce political contest over Vande Mataram, the veteran actor Sharmila Tagore has weighed in, saying that she supports singing of the first two stanzas of Vande Mataram. Her argument is that while those opening verses are inclusive and capable of bringing together people of all faiths, the later stanzas with their religious imagery may not be equally acceptable to everyone in a country as diverse as India. However, actor and BJP MP Kangana Ranaut has now responded, saying that Sharmila Tagore's understanding of art and poetry is limiting. Kangana argues that Vande Mataram is inseparable from India's freedom struggle and should be viewed as a unifying national symbol.
2: Mera point of view hai ki yahan pe kafi religion ke log rehte hain, mazhab ke log rehte hain, jo ek god mein vishwas karte hain, single god, not many gods. Aur Vande Mataram ke jo stanza hai wo वंदना करते हैं मैनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है।

0: We'll check in the top story of the hour for you. The parrot gun row has escalated in the national capital. This after student protester Sahil alleged that he was hit by a pellet in his right eye during a protest in Delhi. This occurred on the 20th of July. The pellet gun controversy has now entered the FIR stage, with the Delhi police registering a case on the victim's complaint. The FIR has been filed against unknown persons over the alleged incident during the July 20th student protest. The Congress protest intensified outside the police office, with the party workers blackening a portion of the DCP office wall and painting slogans targeting Union Home Minister Amit Shah. Rahul Gandhi stepped up his attack over the pellet gun row, alleging that there's been an attempt to delay or prevent the FIR. Union Minister JP Nadda has rejected Rahul Gandhi's allegations and even accused the Congress leader of turning the issue into a political spectacle.
1: The police ne kaha ki humne charre nahi chalaye. To ek hi sawal hai. Agar aapne nahi chalaye to kisi ne to ye charre chalaye honge. शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि FIR दर्ज कीजिए।
2: आज जब राहुल गांधी संसद मार्ग में डीसीपी ऑफिस पहुंचे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया गया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले से ही 20 जुलाई के सभी मामलों में सघन जांच कर रही है। डीसीपी ने यह भी बताया उनको और आश्वासन दिया कि वे इस मामले में जो क्राइम ब्रांच को आपने कहा है वह उनको भेज दिया गया है और क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। प्रशासन के इस स्पष्टीकरण के बावजूद धरने पर बैठ जाना राहुल गांधी के हठ योग को दर्शाता है और हठ योग के साथ साथ हताशा को भी दर्शाता है।

0: संसद मार्ग में डीसीपी ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया गया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले से ही 20 जुलाई के सभी मामलों में सघन जांच कर रही है। डीसीपी ने यह भी बताया उनको और आश्वासन दिया कि वे इस मामले में जो क्राइम ब्रांच को आपने कहा है वह उनको भेज दिया गया है और क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। प्रशासन के इस स्पष्टीकरण के बावजूद धरने पर बैठ जाना राहुल गांधी के हठ यज्ञ को दर्शाता है और हठ योग के साथ साथ हताशा को भी दर्शाता है। इससे साफ हो जाता है कि उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना है।
1: 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। इट्स लीगल, ही इज रिक्वेस्टिंग एन एफआईआर।
2: सर ऑलरेडी
1: नो, ही इज रिक्वेस्टिंग एन इंडिविजुअल एफआईआर फॉर दिस बुलेट, फॉर दिस पैलेट इंजरी। ओके भैया, वेरी सिंपल, यू आर नॉट डूइंग इट
2: सर।
1: ओके,
3: जिसका शरीर में छर्रे के निशान दिखाए आप सबको राहुल जी ने, कि अब एफआईआर होगी, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसने आदेश दिए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राजनीतिक आदेश किसने दिए थे पैलेट गन्स चलाने, कुछ नहीं हुआ, वो भी इंतजार चलती रही। आज सुबह से अब इंतजार कर रहे हैं डीसीपी ऑफिस के बाहर धरना देके राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कि एफआईआर होगी। 6.5 घंटे होने आए हैं, एफआईआर नहीं कर रहे। पुलिस वाले कह रहे हैं कि ऊपर से दबाव है। ऊपर से मतलब किसका दबाव है? जय शाह का है, अमित शाह का है, किसका है?
4: इट इज नथिंग बट ए पीआर विक्ट्री ऑफ राहुल गांधी जी एंड दोज इलेक्टेड पर्सन हु हैव अकॉम्पनीड राहुल गांधी जी। द इशू द गवर्नमेंट हैज बीन सिंपली डिली डाली ऑफ रजिस्टरिंग एफआईआर एंड इन दिस वे दे आर मेकिंग द माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल एंड देयर इज अ प्रोवर्ब that the donkey muddled the water before drinking it. This is simply happened over here.
5: आज घर कैसे सिया का यहाँ पर बैठना पड़ा एलओपी को, तब जाकर यहाँ पर एफआईआर कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि एक आम नागरिक जिसके साथ कितनी भयंकर घटना हो, जिसको आज भी सरकार डिनायल मोड में है कि कोई कंपनी ली नहीं है। हमने वहां पर लोकसभा में भी कहा कि नहीं चली, लेकिन एविडेंस है ना, देख रहे हैं। दबाव तो हुआ ही है, अगर पहले ही दर्ज हो जाती इनके कहने पर और जो साफ नजर आ रहा था, तो एलओपी को इसमें आने की जरूरत क्या थी? लेकिन यहाँ आम नागरिक का किसी का भी कोई अधिकार तो बचा नहीं है।
6: Let's turn our attention to more updates coming in at this hour. Well, it's a big day at the BJP's national headquarters. 3 high-stakes meeting, one very clear message. The party is resetting for whatever comes up next. First up, National President Nitin Nabin will formally introduce his new team of office bearers, laying out responsibilities to set the tone for the party's next phase. Then, barely hours later, top BJP leaders will huddle over ambitious Modi 25 program. A campaign to mark 25 years of Prime Minister Modi's public life, from Chief Minister to the Prime Minister. In the evening, a top strategy meeting will commence around 6 p.m. with the BJP President meeting all state presidents from across the country. Home Minister Amit Shah is also expected to address the gathering, with the core focus being on BJP's next phase of mobilization and the upcoming polls. Well, recent breaking news coming in at this hour. We're learning an important update coming in where Mukesh Khanna has now reacted to Sharmila Tagore's remark. Actor Mukesh Khanna has hit out at Congress. Khanna alleges that appeasement politics is now taking shape. Khanna has even gone on to defend Hindu beliefs and traditions, saying that the Congress is quoting one section. A crucial update coming in, as remember Sharmila Tagore had made certain important comments, especially with regards to Vande Mataram. In the latest, actor Mukesh Khanna has reacted to Sharmila Tagore's remarks. He's hit out at even the Congress party, alleging appeasement politics and defending Hindu beliefs and faiths. He's even said that the Congress is quoting one particular section.
7: Statement kisi aur hamari hamari senior actress ne bhi de diya hai ki ek varg jo hai wo ek hi ishwar ko manta hai. वो ऐसे धर्म को नहीं मानेगा जिसके अंदर बहुत सारे ईश्वर हैं। अरे साहब, हिंदू में बहुत सारे ईश्वर नहीं हैं। कांग्रेस ने कभी कभी कलकत्ता में जाकर, बंगाल में जाकर काली पूजा के खिलाफ

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
4: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: थ्री डेकेड्स ऑफ वॉचिंग द वर्ल्ड चेंज ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस दैट कुडंट वेट ऑफ टेलिंग द स्टोरीज दैट कुडंट बी इग्नोर्ड of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.
4: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
2: रियली
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात.
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
2: अरे मेरे राजा.

0: आज जो माहौल किया है हर जिला में अपना गुंडा को भेजा है,
1: यहाँ
0: गुंडा भेजा था, हर जिला में लाठीचार्ज किया है, यहाँ भी पुलिस जबरदस्ती कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, और जो सर हमारे घर साथी को छेड़ रहे हैं,
2: दुपट्टा पकड़ के घसीटा गया हमारी बहनों को, पुतला छीना गया, कपड़ा फाड़ने का कोशिश किया गया, मारा गया, प्रशासन की आड़ में सरकार गुंडे भेज रही है।
3: राहुल गांधी के कहने पे हुआ है,
4: सरकार जो है तानाशाही रवैया अपना रही है, जिस प्रकार से आज आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, कुचलने की कोशिश, छात्र क्या मांग रहे, अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं ना, किस प्रकार का अन्याय है ये, आप जो है पुतला दहनने करने दे रहे हैं, आप जो है छलावा कर रहे हैं, किस तरह सर गलत है, नाइन साहब हम लोग छात्र है महोदय, हम लोग राजनीति में तैयार करने यहाँ नहीं आ रहे, आप लोग मांगे पूरी कीजिए, हम लोग की बात सुनिए।
5: अपने राज्य की बेटा बेटी सुरक्षित नहीं है, बताइए ना, महिला को मारेंगे, महिला को मारेंगे, क्या किया हम लोग, अरे महिला को मारेंगे, अपने हक के लिए आवाज उठाए, मार मिलेगा हम लोग को।
6: पुलिस प्रशासन के द्वारा इन्हें एक रूट निर्धारित करके दिया गया था, जिसके अनुसार इनको मोराबादी से करमटोली होते हुए जेल चौक होते हुए फिर आयलाल जाना था। पुलिस प्रशासन के द्वारा दिए गए रूट की इन्होंने अवहेलना की और स्वयं अपनी मर्जी से ये जो है कचहरी चौक रेडियम चौक होते हुए बिना अनुमति के जेपीसी कार्यालय के सामने इन्होंने उग्र प्रदर्शन किया। इनके द्वारा जो है दो लोगों की बुरी तरीके से पिटाई कर दी गई, उस व्यक्ति की जान बचाने हेतु पुलिस को हल्का बल्का प्रयोग करना पड़ा। उसके बाद ये लोग जो है सदर हॉस्पिटल में हंगामा कर रहे हैं, इनके द्वारा मरीजों को परेशान किया जा रहा है, जो डॉक्टर है वो सही से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ सदर हॉस्पिटल में जो है बहुत सारे मरीज है जिनका इलाज चल रहा है, तो उनके इलाज में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो इसलिए उनको सदर हॉस्पिटल के बाहर किया गया।
7: ये लोग रेडियम रूट काट लिए, उसके बाद कचहरी चौक आए और कचहरी चौक से फिर जेल चौक और जेल चौक से भी आगे बढ़ना चाह रहे थे, और बहुत मुश्किल से वहाँ से रोका गया और इधर से इन लोगों को किधर किया गया, हाँ वहाँ भी जाकर के ये लोग रोक गए थे, पूरा आवागमन ठप कर दिए थे, जहाँ तहाँ ये लोग ज्वलनशील पदार्थ से पेट्रोल से और इससे ये जलाने लगे थे।
8: शाम के समय जैसे जानकारी मिली छात्रों का फोन आने लगा कि पुलिस बर्बरता पूर्ण तरह से लाठी चार्ज किया और जेएमएम के पट्टे पहनकर उनके कार्यकर्ता वो महिलाओं के साथ अभद्रता के साथ उनका जो पुतला था उसको लूटने का प्रयास किया, उनके कपड़े फाड़े गए, और जो यहां आकर स्थिति मैंने देखा कि जो छात्र नेता जो आप रविंदर करके हैं और एक कुणाल करके हैं, जिस तरह से स्थिति उनको देखा कि पूरा चेहरा में सूजन, सीना में चोट, आपके पीठ में चोट, अचेत अवस्था में, और पुलिस का जो व्यवहार देखने को मिला, ये सरकार के इशारे पर इस तरह का पुलिस व्यवहार किया है।
9: Let's now turn our attention to Jammu and Kashmir. Now, land subsidence has once again damaged homes in Jammu's Kheri area, forcing families into tents. 8 houses have been partially damaged, with residents reporting massive cracks and even land sinking by up to 20 feet. NDTV's report from the Ground Zero brings you the situation and how it looks. Take a look.
10: Right now, I'm in Kheri village in Bantlab in Jammu outskirts, where about 8 structures are completely damaged because of land subsidence. Behind me, you can see house that has collapsed like pack of cards. The frontal wall of the house has crumbled and you can see the cracks developed in the wall. What the locals are saying is that because of the rainfall, initially the cracks developed in the wall and after that the houses started crumbling. And reason was that the land started sinking. Let me show you. See how the land has started sinking in this area. At some of the places, it has sunk about 15 to 20 feet. All the hard-earned money here seems to have collapsed like pack of cards. And that is the story of this village, where 8 to 10 houses collapsed. Family members really worried. They're concerned. They're looking towards administration for some kind of a help. Last year, they got some kind of help from their side. But this time, they say nobody has turned so far. They say how to do. They have left with no other option but to sleep in open. Those who have got the tents, they will be staying putting in tents. They will live there. But others, they are saying they've lost everything. So they have lost their source of livelihood, they have lost their house, they have lost their peace of

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा,
1: सबका राजा आग प्योर मसाला।
5: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
7: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: अक्रॉस द कंट्री
9: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया। विटनेस्ड हिस्ट्री बीइंग मेड इन ग्लोबल कैपिटल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स। ब्रॉट क्लैरिटी टू कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। आदित्य राज कौल, covering international affairs like no one else, only on NDTV network.
7: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani aur pure vermicelli, swadisht sehatmand har roz.
9: 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV. When it really matters.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.
3: Hindustan mile, Hindustan se.
4: Desh ka tire, JK tire.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।
7: सबका राजा प्योर मसाला।
8: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
9: अक्रॉस द कंट्री
10: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया। विटनेस्ड हिस्ट्री बीइंग मेड इन ग्लोबल कैपिटल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स। Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
4: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
3: थ्री डेकेड्स ऑफ वॉचिंग द वर्ल्ड चेंज, ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस दैट कुडंट वेट। ऑफ टेलिंग द स्टोरीज दैट कुडंट बी इग्नोर्ड। Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV when it really matters.
4: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज़।

0: सुबह।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
3: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
2: थ्री डेकेड्स ऑफ वॉचिंग द वर्ल्ड चेंज। ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस दैट कुडंट वेट। ऑफ टेलिंग द स्टोरीज दैट कुडंट बी इग्नोर्ड। Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV when it really matters.
3: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.

0: अगर आपके पत्रकारों में नैतिकता है, अगर वो ढंग से सवाल पूछते हैं, खौफ होके नेताओं से, मंत्रियों से, कॉर्पोरेट से सवाल करते हैं, तब तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको पहचानेंगे। और अगर आपकी खबरों में धार नहीं है, अगर फीकी, अधूरी, डरी हुई खबरें आप दिखा रहे हैं, तो लोग उसको बहुत जल्दी देख लेंगे। बीते ही एक साल में पंकज, आप YouTube लीजिए, डिजिटल लीजिए या सोशल लीजिए, इंटरनेट लीजिए, NDTV हर पैमाने पर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। YouTube में पहले चैनल की रैंकिंग 12 हुआ करती थी, अब या तो एक है या दो है, नंबर वन या नंबर टू, महीने दर महीने आ रहा है। इसी तरीके से Instagram पे, TV में भी हर हफ्ते हम लोगों की रेटिंग्स बढ़ रही थी। अब तो कई हफ्तों से रेटिंग आ नहीं रही, लेकिन उससे पहले लगातार इजाफा हो रहा था। तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं लोग हैं जिनको आपकी पत्रकारिता अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, आपकी जर्नलिज्म उनसे कनेक्ट कर रही है, इसीलिए वो देख रहे हैं। अगर नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। आप किसी को भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप कभी भी कुछ आप बहुत होशियारी से बोल दो और मान लो कि लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर वो खबर देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि ढंग से कर रहा है, तो उसको मानेंगे। अगर उनको लग रहा है कि ढंग से नहीं कर रहा, उसको कभी नहीं मानेंगे। तो मुझे लगता है कि जनता जैसे वोट देती है, वैसे उस तरीके से अगर वो आपको वोट देगी, आपकी पत्रकारिता वोट देगी तो देखेंगे, नहीं देगी तो नहीं देखेंगे। और मेरी जिम्मेदारी है कि लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करना, सच्चाई से, ईमानदारी से, निष्पक्षता से खबरें दिखाना, बिना डरे खबरें दिखाना। और अगर हमारी ईमानदारी लोगों को अच्छी लगेगी तो खबरें देखेंगे, नहीं लगेगी तो नहीं देखेंगे।
1: टॉकिंग अबाउट एडिटोरियल इंटेग्रिटी, नाउ यू नो NDTV वाज फॉरएवर कंसीडर्ड एज दैट लास्ट बastion ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। इज इट स्टिल अ पीपल्स चैनल? एंड द केस इन पॉइंट इज व्हेन द नीट प्रोटेस्ट हैपेंड, नेशन वाइड प्रोटेस्ट देयर, अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट पॉपुलेशन दे अलेज्ड दैट द मेनस्ट्रीम मीडिया इंक्लूडिंग NDTV showed more of the political angles and demanding accountability from the government or showing students' demands. What is your response to that criticism?
0: Neeta, NDTV was arguably the only mainstream media organization which had a battery of its top anchors, editors, reporters deployed at Jantar Mantar covering that protest non-stop. You know, our managing editor Shiva Roor went there, Padmaja Joshi was there, Sucharita Kukreti, Sohail from our Hindi channel, Ankit Tyagi was there, like the entire galaxy, Vishnu Shom was there day after day. So the entire galaxy of NDTV talent was out on the ground covering that protest. It is but natural that protesters will have concerns, and those are legitimate. Mainstream media hasn't done a fantastic job of conducting itself, and that is the reality. You can't run away from that. If you call the students goons, etc., then obviously people out in the streets won't like you. But I was determined to ensure that we were out in the streets with the protesters, listening to their voice, ensuring that their voice is heard and amplified to our audience. Whether we did this well enough, did we do enough, could we have done more, those are legitimate questions. You can't run away from them. But it's not as if we were trying to vilify the protesters or demonize them or just try and find fault with them. There were also certain anti-social elements who had crept in and were antagonizing the police. That is also a reality. Some of that data has come out as well. I think that's as much a part of the story. You carry the voice of the protesters. You also show if the protesters or some protesters attack the police. I think this is what journalism is. It's not about picking a side. It's not about whether you're left or right, whether you tom-tom just what the government says or blindly believe everything the students say. I think the whole job of journalism is to look at what's being said, applying your own brain, looking at the story as it is before your eyes and reporting both sides of it, which is what we tried to do as best as we could. And that's what we'll do in every such opportunity that comes along.
2: यस नीता जी के सवाल से जोड़ा ही मेरा एक छोटा सा सवाल है। जैसे अभी हम प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, नीट का जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, तो तमाम लोगों का कहना है कि मीडिया ध्रुवीकरण में बंद गई है, मतलब पार्ट्स में डिवाइड हो गई है और विश्वसनीयता खोई है, जैसा कि वहाँ पर तमाम रिपोर्टर्स के साथ हुआ। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मीडिया की विश्वसनीयता वास्तव में कम हुई है, और क्या इसको वापस पाने के लिए आपकी नज़र में क्या किस तरह से पाई जा सकती है?
0: पंकज, आपने मेरे काम को पिछले 2.5 दशक से देखा है। मैं लेफ्ट या राइट पक्ष में या खिलाफ में इस तरह की पत्रकारिता में विश्वास ही नहीं करता। मेरे हिसाब से कि आपको सबकी सुननी चाहिए। सरकार का कोई कार्यक्रम होता है, वहाँ जाते हैं, कांग्रेस या विपक्ष का कोई कार्यक्रम होता है, वहाँ भी जाते हैं, उनको भी सुनते हैं, और मैं इसी तरह की पत्रकारिता में विश्वास रखता हूँ। तो ये कहना कि जनता के बीच में मेनस्ट्रीम मीडिया को लेकर सवाल हैं, एकदम हैं, वाजिब हैं, और मेरे में ही जहन में कई सारे सवाल हैं, क्योंकि हमारे कई सारे साथी हैं जो अजीब अजीब हरकतें करते हैं, जो जब इस तरह के सवाल पूछते हैं, इतना डर के पूछते हैं, लेट पे किसी के चरणों पे लेट के पूछते हैं, भाई उसको क्या ही कर रहे हैं यार, मतलब कैसे सोते होंगे रात को, मतलब ईमानदारी से करो अपना काम करो, और नहीं कर पाए तो घर जाओ, मतलब कोई ऐसी मजबूरी तो है नहीं ना करने की, आपको जो करना है जिस हद तक आप ईमानदारी से कर सकते हो आपको करना चाहिए, नहीं कर पाए तो कुछ और कीजिए, ऐसे आपको किसी ने बांध के थोड़ी रखा हुआ है कि डर डर के आप सवाल पूछ रहे हो। भाई सर, जनता का काम है सवाल पूछना, सरकार का काम है सवालों के जवाब देना। वित्त मंत्री इस प्रोटेस्ट खत्म होने के अगले दिन NDTV प्रॉफिट के कार्यक्रम में आई थी, बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स मुंबई में ताज कुलाबा में था, और हमने कई सारे सवाल पूछे कि क्या बहुत देरी कर दी सरकार ने स्टूडेंट्स से इंगेज करते हुए, पहले क्यों नहीं जगे, इतनी नाराजगी स्टूडेंट्स में आई, आपको पता क्यों नहीं चला, पहले धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों नहीं जवाब दिया। वहाँ पे कई सारे औद्योगिक घरानों के लीडर्स थे, उन्होंने बोला अरे आप में बड़ी हिम्मत है, आपने किस तरह से ऐसे सवाल पूछे। मैंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है, हिम्मत नहीं है, ये मेरा काम है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा फ़र्ज़ है, और जिस हद तक मैं कर सकता हूँ उसको मैं करूँगा, और इसमें मुझे कोई ब्रेवरी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, किसी से नोबेल प्राइज़ नहीं चाहिए, ये मेरा काम है, मैं अपना काम ठीक से करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि हमारी टीम में जितने भी एंकर्स हैं, संपादक हैं, रिपोर्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो अपना काम अच्छे से करें, और हमारी उम्मीद है कि हमारी जो ईमानदारी है, हमारी जो सोच है, हमारे जो प्रयास है, वो जनता देखेगी मानेगी। मेरे को जो चिंता है पंकज, वो ये कि जनता के बीच में कभी कभी वो मेन स्ट्रीम मीडिया को एक मोनोलिथ के तौर पर देखते हैं कि सारे चैनल एक जैसे हैं, या सारे नेता चोर हैं, या सारे पुलिस वाले चोर हैं, या सारे पत्रकार बिके हुए हैं। मेरे को लगता है वो गलत है। अगर आप देखो तो आप पाओगे कि अलग अलग शेड्स, जिंदगी में पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सारे पत्रकार एक जैसे नहीं होते, सबका अपना सोचने का तरीका है, अपना काम करने का तरीका है, और मुझे लगता है जैसे आने वाले वक्त में NDTV और काम करेगा इस नए अवतार में, लोग जो हम लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं वो नहीं, जो हम लोग कर रहे हैं उसको देखेंगे, अगर उनको अच्छा लगेगा तो मानेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं मानेंगे।
3: सो रिलेटेड टू दिस, व्हाट इज द टफेस्ट चैलेंज इन लीडिंग अ लेगेसी न्यूज ब्रांड अकॉर्डिंग टू यू?
0: द की इज रेलेवेंस एंड माइंड स्पेस। यू नो, एज वी लिव इन द अटेंशन इकोनॉमी वेयर अटेंशन स्पैन्स आर बिकमिंग शॉर्टर एंड शॉर्टर, लाइक इंस्टाग्राम रील्स, how do you capture mind space and attention? And it is very easy to capture attention if you are in one corner. If you are extreme right, you call the students goons, there will be a certain population you appeal to. If you are fully on the side of the students and you think the government is the worst thing, it's the worst government in the world, it's the most horrible thing that's happened to India, if you project that image, as many people do, then again you'll have a very core constituency of loyal believers. How do you find space in the middle? I believe India's democracy thrives in the middle. This is where our democratic values live, they breathe. I think of NDTV as a big tent of ideas, of opinion, of shades. This is not one Moses leading the way and showing people the path. This is not about what I think. This is about different editors, different journalists, different shades of opinion. I don't have to agree with everything each one of our anchors or editors says. You have to give people shades of opinion. Pankaj may have a different take at Samachar for media on a story. Neeta may look at it differently. Rohil may look at it differently. You have to be able to appreciate different points of view. You can't say, this is the only point of view. I know in some networks, that's how it works, that the editor-in-chief says, this is my line on the story and expects all reporters to follow exactly that line. I think that is wrong. I think that reporters need to report what they're seeing around them. It should not be dictated from somebody sitting in an AC studio dictating and determining what their reporters and anchors will say. And I think anchors and editors should be allowed to voice their own thoughts without being dictated by a central command. This is the line, this is the WhatsApp group, and now this is what you must say. I think that's wrong. That's not journalism. That's propaganda.
1: At the risk of making it sound like a monolith, the younger generation think that the traditional media has failed them, and the independent digital platforms are the way forward. Now, in this case, also considering the kind of adoption digital has, you know, how everybody's flocking to digital, would you say your main priority and your main competition is battling with the digital platforms as opposed to your other contemporaries on TV?
0: Neeta, NDTV has been digital first long before I got here. Long before other newsrooms were even thinking of apps, this is the OG of India's digital ecosystem. They have one of India's best news apps, if not one of the world's best news apps. Their Google domain authority is very deep into the Google algorithm. which is why when you're looking for stories, you know, the first brand, the keyword that pops up is NDTV, which is nothing to do with us at this moment. This is the work that the fabulous

0: This battery of journalists, editors, producers over three decades have done this is thanks to their effort. That this is India's digital OG. So other platforms are coming to terms with this digital reality now. NDTV was digital first, even in terms of revenue. We make more money on the digital side than we do on television. And therefore, this is not something that scares us. NDTV is and has been forever digital first. It's a change we're embracing wholeheartedly. And ultimately, even on these digital platforms, people will go to handles or pages or channels that they connect with. Mm-hmm. Ultimately, when there's so much algorithmic pushes, do people trust your brand? NDTV Digital has amongst the highest percentages of people coming directly on the homepage.
1: Okay.
0: In the companies that I've known, just a very small fraction of your daily readership comes directly to the brand. Most of it came earlier through Google search and Discover. NDTV is the one Indian news organization which gets people directly on the homepage. That's the connect it has with its audiences. And we're trying to build on that. You're trying to build on that, you're trying to grow that, and that's the effort that's currently underway. So I think I'm hugely excited by the changes the digital frontiers present for news organizations. I know that there is a lot of upheaval at this moment. Many will potentially fall by the wayside. But I am quite certain that the one brand that will be standing once the ruins are being counted will be NDTV.
2: इन सब सवालों को आगे बढ़ाते हैं. आपने चैलेंज की बात की, आपने डिजिटल की बात की. अगर हम आपके 12-14 महीने का, शायद मेरे ख्याल से आपका 16 महीने का, तो इस जो कम समय में आपने क्या क्या चेंजेस किए जो आप आए तब से, उसके बाद आपने न्यूज़ रूम में क्या क्या चेंज किए, पहली बात. दूसरी चीज़, क्या आपको लगता है कि जो चेंज किए वो सभी काम कर रहे हैं? बाकी आप क्या करने वाले हैं इस पर तो हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल इस पर बात करते हैं.
0: सबसे पहले पंकज, हमने अपने कोर न्यूज़ को मजबूत करने की कोशिश की कि अगर आपकी न्यूज़ टीम्स हैं, वो हिंदी में हो, अंग्रेज़ी में हो, बिजनेस में हो, रीजनल लैंग्वेजेस में हो, तो वो लगना चाहिए कि वो लड़ भिड़ रहे हैं न्यूज़ के लिए. ऐसा नहीं लग रहा कि न्यूज़ ब्रेक हो रही है, ये लोग सो रहे हैं या वीकेंड मना रहे हैं, या फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि खबर आ रही है जा रही है, हम लोग हरकत में हैं कि नहीं. कि लगना चाहिए कि ये 24 घंटे का निरंतर लगातार ताबड़तोड़ न्यूज़ चैनल है. पहले वो एनर्जी और वो पैशन आपके न्यूज़ रूम में, आपकी स्क्रीन पर, आपके टिकर पर, आपके ट्विटर हैंडल पे, आपके इंस्टाग्राम पेज पर दिखना चाहिए कि ये न्यूज़ में. दूसरा ये कि आप ये नहीं मान सकते कि हम लोग रेस में हैं. क्या आप लोग रेस जीतने के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं? ये हमने जैसे कभी कभी क्या होता है कि कहते थे कि हाँ, इंडियन टीम गई ओलंपिक्स में, हमने हिस्सा लिया, बहुत अच्छी बात है. मैं यहाँ पे ओलंपिक्स में हिस्सा लेने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे जीतने आया हूँ. और टीम में वो जज्बा हो कि हम लोग जीतेंगे, हम जीत रहे हैं, हम जीतने की तरफ प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है. तो पहले तो न्यूज़ को आप स्ट्रेंथन कीजिए कि आपके चैनल की कोई रेलेवेंस हो. ऐसा नहीं हो सकता कि NDTV क्या दिखा रहा है, इससे किसी की सेहत पे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि वो है तो भी, नहीं है तो भी. मतलब कई सारे चैनल इतने रूखे सूखे से हैं कि वो दिखाएं करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. NDTV पे खबर चलती है तो व्हाइट हाउस से लेकर दिल्ली के हर गलियारे तक, चेन्नई से लेकर दुनिया में आप कोई भी हिस्सा ले लीजिए, वहाँ पे उसका असर है. ये मुझे पता है क्योंकि फ़ोन मुझे आता है कि खबर है, चैनल का इम्पैक्ट है, उसका रेलेवेंस है, ये बात है. तो पहली बात तो ये है कि ब्रांड का रेलेवेंस होना चाहिए, कोई क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, कोई विश्वसनीयता होनी चाहिए. दूसरा ये कि ऑडियंस आपको देख रही है कि नहीं. NDTV में एक वक्त पे ये सोच थी कि यार, हम तो बहुत अच्छे हैं और हम बहुत अच्छा करते हैं, लोग हमें देखते नहीं हैं. लेकिन वो इसलिए क्योंकि ये रेटिंग वेटिंग सब बर्बाद है, इससे कुछ होता नहीं है. और हम रेटिंग के पर, मैं ये नहीं मानता भाई, अगर आप काम कर रहे हैं तो लोग आपको देख रहे हैं कि नहीं. वो इंस्टाग्राम पे हो, एक्स पे हो, लिंक्डइन पे हो, टीवी पे हो, यूट्यूब पे हो, तो आपको दिख ही रहा है ना. आप ही नहीं कह सकते ये मेरा वीडियो तो बेस्ट वीडियो था, इसको किसी ने देखा नहीं लेकिन मेरे सवाल इतने अच्छे थे कि उनको समझ में आया. ये कोई मतलब नहीं. इस लॉजिक से मैं एग्री नहीं करता कि अगर आप कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट होना चाहिए, वो दिखना चाहिए. तो दूसरा हमने कोशिश की कि जो हमारा काम है, जैसे यूट्यूब पे, सोशल पे, डिजिटल पे, क्योंकि पिछले कई सालों में कई सारी फाइनेंशियल दिक्कतें थी, कई सारे लीगल चैलेंजेस थे, तो जो प्रयोग बाकी कंपनियों में हुए वो इतना यहाँ पे नहीं हुए क्योंकि टीम बाकी चीज़ों में फंसी हुई थी. तो उन चीज़ों को हमने मजबूत करने की कोशिश की. और तीसरी कोशिश हमने की कि एक NDTV मल्टीवर्स बनाने की दिशा में हम लोग बढ़ें, जिसमें लाइफलाइन, जो कि हेल्थ केयर, एंटी एजिंग, वेलनेस, इससे जुड़ी हुई है, लॉन्च पैड जो कि करियर प्रोग्रेशन, अपस्किलिंग, इस तरह की चीज़ों से वास्ता रखता है. NDTV गुड टाइम्स जो कि लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट, फिल्म्स, लग्जरी, इस तरह की चीज़ों से वास्ता रखता है. NDTV ऑटोमेट जो कि गाड़ियों के बारे में हम खबरें दिखाते. तो इस तरह के कई सारे वर्टिकल्स पे हमने काम करना शुरू किया. एक तरीके से जैसे आप मानिए कि अभी

नहीं होते, आपके पीठ पीछे आपकी टीम क्या बोलती है ये ज़्यादा अहम है। अगर आपके सामने, अगर आपके बॉस यहाँ पे खड़े हों उनके सामने, तो आप उनकी तारीफ करेंगे ही, लेकिन जब ये कैमरा बंद हो जाए

0: हैं या आपके बारे में अच्छी चीज़ें कहते हैं या कहते हैं कि आपसे उन्होंने कुछ सीखा या जाना या देखा, वो एक ऐसी पूंजी है जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है और वही मेरी ज़िंदगी की असली पूंजी है। वही पूंजी कमाने की मैं हमेशा कोशिश करता हूँ।
1: सो राहुल, टेल मी, इज़ देयर एनीथिंग दैट बॉदर्स यू द मोस्ट? व्हाट इज़ दैट थिंग दैट बॉदर्स यू एज एडिटर एंड सीईओ ऑफ एनडीटीवी द मोस्ट?
0: आई थिंक द फैक्ट दैट एआई इज़ प्लेइंग द काइंड ऑफ रोल दैट इट इज़, रोहिल, एंड दैट गूगल सर्च एंड डिस्कवर ट्रैफिक इज़ कमिंग डाउन ऑलमोस्ट वीक आफ्टर वीक, नॉट जस्ट मंथ ऑन मंथ, इज़ अ ह्यूज कंसर्न फॉर ऑल डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स। एनडीटीवी इज़ लकियर देन मोस्ट in the sense that we have a lot of direct traffic that comes straight to the page, whether it's our home page or it's the app, and a lot of people come directly and engage with the website. But that's not something that we take for granted. The fact that there is a massive downturn in Google search traffic and Discover traffic, and that this is upending all notions of the digital business as we know it, that's of concern. So moving to build the kind of multiverse that I described earlier with speed and purpose, so that before you get to a Google Zero world, you've built out a multiverse which can sustain you. Because when algorithms decide where brands go or where news goes or where users go, the only thing a media organization has is trust. It has credibility. It has the belief of its consumers that bring those consumers back to the brand's homepage or app. That is all that you have. Building that is what is of immense importance to us. I know it's like time is running out. We're heading towards Google Zero. We're trying to rebuild all that we're trying to build, and we're trying to do it really quickly so that before we get to a Google Zero world, what have you got which can last in a Google Zero scenario?
2: Okay. एक ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी की आपने बात करी, और अभी हम जो बात करें कि एआई की, तो मेरे दो सवाल आपस में जैसे मिले हुए हैं कि एआई न्यूज़ रूम में लगातार चल रहा है, तो एआई को लेकर एनडीटीवी क्या कर रहा है, और क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ये चुनौती और बढ़ेगी? तो किस तरह से ऐसा कोई है कि जो एआई कर सकता है, मतलब जो आदमी कर सकता है वो एआई नहीं कर पाएगा, एक तो ये, दूसरा, और ऐसे माहौल में जब एआई बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, फेक न्यूज़ है, ट्रस्ट की आपने बात करी, तो कैसे मेंटेन रखेगा एनडीटीवी उसे?
0: एनडीटीवी में हम लोग बहुत एआई यूज़ कर रहे हैं न्यूज़ प्रोसेसेस में, टेक्स्ट को ग्राफिक बनाने में, एडिटिंग में, आपके अलग अलग फॉर्मेट्स को रीपर्पस करने में। पहले बहुत सारा टाइम ख़राब होता था कि आप पहले वर्टिकल वीडियो बना रहे हो, अब आप हॉरिजॉन्टल बना रहे हो, तो कई सारी चीज़ों में आप एआई के इस्तेमाल से काम को जल्दी कर सकते हैं, ज़्यादा स्पीड से कर सकते हैं, ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकते हैं। साथ ही साथ फाइनेंस में, एचआर में, लीगल में, कई सारी चीज़ें जिसमें बहुत वक्त लगता था, वो अब कम वक्त में एआई की सहायता से की जा सकती है। मैं एआई एंकर्स में विश्वास नहीं करता। मुझे मालूम है कई न्यूज़ रूम्स हैं जहाँ पे कहते हैं कि एंकर्स हमारे एआई वाले हैं।
1: आप ही ने लाए थे शायद।
0: मेरे को लगता है कि जो भी खबरें बता रहा है वो इंसान होना चाहिए, क्योंकि आप मानेंगे, जैसे मैं हूँ यहाँ पे, मैं आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ, आप लोग हर तरह का सवाल पूछ रहे हैं। अब मैंने कैसे जवाब दिया, उस जवाब में विश्वसनीयता थी या नहीं, ये तो जो दर्शक है वो देखेगा और तय करेगा ना। अगर यहाँ एआई मशीन बैठ के या कोई महिला या पुरुष एआई एंकर आके खबरें बता दे, तो आपका जो कनेक्ट है दर्शकों से वो कट जाता है। तो फिलोसॉफिकली, आइडियोलॉजिकली, आई एम अपोज टू एआई एंकर्स। आई बिलीव दैट देयर इज अ लॉट ऑफ यूज फॉर एआई एट द बैक एंड इन न्यूज़ प्रोसेसेस, प्रोडक्शन, ग्राफिक्स, automation, finance, HR, legal. So that's where we are using AI on the app, creating more content, etc. But then you want to see Pankaj faces. If you see a Shivarur, you know about him. You know what he does. You know what kind of food he eats, what he likes, what he doesn't like. You know his biases. You know his strengths. And you process it, keeping him in mind. Same is the case with Sayyed Sohail. Take anybody, Padmaja. You want to feel human beings. You don't want to be talking to a machine when you're consuming the news, and that is really important. So the ultimate person who delivers and presents the news has to be human. I think that is very important. A human connection with your audience is extremely important. AI has a lot of use. The use is largely at the back end. Mm-hmm. The moment you have fake anchors and AI anchors presenting the news, you've lost your connection with the audience. Then what's the difference between your marquee media brand and somebody else? It's ultimately just a machine that's talking. You've programmed a machine, some kid sitting in some school, university, he can program another machine. What's the difference? I think it's a bad idea.
3: So we will never see a Rahul Kawal AI avatar on screen.
1: We're not even seeing you anchor the main show. I mean, so...

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियल मसाला।
5: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, उनकी मौजूदगी में जब तिरंगा लहराया जा रहा था, फहराया जा रहा था, उस समय जब वंदे मातरम शुरू हुआ, आरंभ हुआ, तो सोनिया जी ने इशारों में दो छंदों के बाद, दो पदों के बाद, दो स्टैंजास के बाद स्टॉप स्टॉप कहते हुए उन्हें देखा गया। कहीं ना कहीं उनके शीर्ष नेतृत्व में, खास करके सोनिया जी और राहुल जी में अफरा तफरी का माहौल था, मानो कुछ अपशब्दों का प्रयोग हो रहा हो। जिस प्रकार का भगदड़ मचा और जिस प्रकार के रिएक्शन पूरे देश में आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में आई और सबने कहा कि सोनिया जी स्टॉप नहीं कह रही थी, सोनिया जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगा रही थी। तो सभी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कुर्सी मंगाया जा रहा था, मगर 19 अगस्त 2026 आज से कुछ दिनों पहले CWC के मीटिंग में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पारित किया गया, जो रिजोल्यूशन 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अक्टूबर माह में कलकत्ता में पारित किया था। और वो रिजोल्यूशन था कि हम 6 छंदों के वंदे मातरम को नहीं मानेंगे, हम वंदे मातरम का विभाजन करेंगे, वंदे मातरम को काट छांट करके केवल 2 ही स्टैंजा, 2 ही पद वंदे मातरम का गाएंगे। हम सब जानते हैं 1937 में यह निर्णय क्यों लिया गया था। वंदे मातरम 1875 नवंबर 7 तारीख को लिखा गया था ऋषि बंकिम जी द्वारा, और वह दिन था अक्षय तृतीया का दिन। अक्षय तृतीया मतलब जो क्षय नहीं हो, यह एक ऐसा बीज मंत्र है देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए, जिसके लिए करोड़ों लोगों ने बिना सोचे बिना जाने केवल वंदे मातरम बोलते हुए उन्होंने अपने जीवन को न्योछावर किया है भारत मां के ऊपर। 7 नवंबर 1875, जब उसका 100 साल की पूर्ति होती है 1975 में, देश में आपातकाल की परिस्थिति रहती है, उस समय इमरजेंसी चल रहा होता है कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में, हम 100 साल मना नहीं पा रहे हैं। 150वां साल मनाया जाता है, सदन के अंदर चर्चा की जाती है, शीतकालीन सत्र 2025 में 8 तारीख को लोकसभा में चर्चा होती है 11 घंटे से अधिक समय के लिए, और राज्यसभा में 9, 10 और 11 तारीख को चर्चा होती है 12 घंटे 50 मिनटों के लिए, और वंदे मातरम की विस्तृत जानकारी समस्त देशवासियों को दिया जाता है कि किस प्रकार वंदे मातरम का गायन होता था और किस प्रकार संपूर्ण वंदे मातरम आनंद मठ का हिस्सा होता था, और किस प्रकार अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों ने 1906 में, क्योंकि वंदे मातरम लिखा गया था ऋषि बंकिम जी द्वारा, क्यों, क्योंकि 1905 में बंग भंग हो रहा था बंगाल के विभाजन को रोकने के लिए, बंग भंग को रोकने के लिए वंदे मातरम लिखा गया था 1906 में बरिसाल में, जिस समय वंदे मातरम का उच्चारण करके नर और नारी निकले थे, उस समय ब्रिटिश सरकार ने उसे बैन किया कि कोई वंदे मातरम गा नहीं सकता है, मगर फिर भी बरिसाल में वंदे मातरम गाया गया, और उसके पश्चात 1907 में मैडम बिकाजी कामा ने वंदे मातरम लिखे हुए झंडे को भी फहराया। जो ब्रिटिश सरकार वंदे मातरम को रोक रही थी, आज वही कांग्रेस सरकार वंदे मातरम को रोक रही है। आप चिंता करके देखिए, ये छोटा विषय नहीं है, ये राजनीति का विषय नहीं है, यह विषय देश के विभाजन का है। याद करिए 1937 से पहले कांग्रेस के अधिवेशन 1923 में काकीनाडा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस समय पंडित विष्णु दिगंबर जी गाने वाले थे वंदे मातरम, संपूर्ण वंदे मातरम, मगर कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली वो वॉकआउट करते हैं कि मैं नहीं गाने दूंगा संपूर्ण वंदे मातरम, और 1923 के उस प्रकरण के बाद 1937 में पहली बार नेहरू जी के कहने पर वंदे मातरम को विभाजित किया जाता है, उसे तोड़ दिया जाता है, केवल एक हिस्सा ही गाया जाता है। परिणाम क्या हुआ, जो चिट्ठी 19

1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना को लिखा था, वह स्पष्ट रूप से उस चिट्ठी को पढ़िएगा तो नेहरू जी, जिन्ना जी की जो डिमांड्स थी, 14 जिन्ना के डिमांड्स थे, उनके सामने घुटने टेकते हुए नेहरू जी कहते हैं, हमने मान तो लिया है, आप वंदे मातरम पर प्रतिबंध चाहते, मान तो लिया है हमने, हम संपूर्ण वंदे मातरम का पठन नहीं करेंगे, कांग्रेस उसे नहीं गाएगी, मगर यही तुष्टिकरण की बीज, दिस सीड ऑफ अपीजमेंट विच वॉज सोड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द ईयर 1937 वॉज द सीड ऑफ पार्टीशन, यह विभाजन का बीज बनता है। और उस समय जिन ताकतों को शक्ति मिली, उन ताकतों ने देश को आगे चलकर विभाजित किया। आज पुनः कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी और राहुल जी का व्यवहार 15 अगस्त को जो व्यवहार रहा, और उसके बाद CWC में जो रिजोल्यूशन 1937 के रिजोल्यूशन को पुनः पारित किया, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रथम पदाधिकारी बैठक में हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने पुरजोर तरीके से यह कहा है कि यह जो विभाजन करने की बीज बोने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, हम कदाचित इसे नहीं होने देंगे। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने शायद पढ़ा नहीं है कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था वंदे मातरम के लिए। मैं पढ़ना चाहूंगा महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था वंदे मातरम के लिए। महात्मा गांधी ऑन वंदे मातरम, नो मैटर वॉट इट्स सोर्स वॉज एंड हाउ एंड वेन इट वॉज कंपोज्ड, इट हैज बिकम अ मोस्ट पावरफुल बैटल क्राई अमॉन्ग हिंदूज एंड मुसलमान्स ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द पार्टीशन डेज। इट वॉज एंटी इंपेरियलिस्टिक क्राई एज अ लैड वेन आई न्यू नथिंग ऑफ आनंद मठ और इवन बंकिम इट्स इमोर्टल ऑथर। वंदे मातरम हैड ग्रिप्ड मी एंड वेन आई हर्ड इट संग इट, it had enthralled me. I associated the purest national spirit with it. I repeat, I associated the purest national spirit with it. It never occurred to me that it was a Hindu song or meant only for Hindus. Unfortunately, we have fallen on evil days. Unfortunately, we have fallen on evil days. This is what Mahatma Gandhi said. Gandhi ji ne kaha, dukhad din aa gaye hain. Uske aage bhi pad deta hoon ek sentence Gandhi ji ka. And that was all pure gold. That was all. Wo che chand. That was all pure gold before has become base metal today. Jo pehle pure gold tha, ab wo base metal ban gaya hai. Yaha Gandhi ji ka manna tha. Aur aaj Congress party ne jaan bujh kar तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ाया है। यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है, हम भी इसमें पीछे नहीं हटने वाले हैं। टू नेशन थ्योरी को 1937 के कांग्रेस रिजोल्यूशन ने बोया था, वहां आरंभ हुआ था, पुनः यह जो कोशिश की गई है, इस कोशिश को किसी भी कीमत पे हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। इतना ही नहीं, इस बार मानसून सत्र में आप सबको पता है, मॉनसून सत्र में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट एक्ट 2026 पारित हुआ। क्यों पारित हुआ? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, नन अदर देन द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनके खुद का वाक्य था कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और जनगणमन दोनों को एक ही दृष्टिकोण से देखा जाएगा और दोनों को एक समान सम्मान प्राप्त होगा। दिस इज व्हाट ही डिक्लेयर्ड ऑन 24 जनवरी 1950, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष। और उसके पश्चात धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और तमाम सांसदों को जिन्होंने खड़े होकर एकमत होकर कहा कि हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और नेशनल ऑनर को इंसल्ट नहीं होने देंगे, जनगण मन के बराबर हम वंदे मातरम को खड़ा करेंगे। हां, किसी को बाध्य नहीं करेंगे, मगर जो बाधित करता है वंदे मातरम को आगे बढ़ने से, वंदे मातरम को गाने से, वह दंडित होगा।

0: आप चिंता करिए किस प्रकार से बाधित करने की कोशिश की गई वंदे मातरम को, वह अभी कांग्रेस के मुख्यालय में। आप मुझे यह बताइए, आज देश से मैं पूछता हूं, पार्लियामेंट बड़ा है या सीडब्ल्यूसी बड़ी है? किसके आधार पर देश चलेगा? पार्लियामेंट में जो निर्णय होंगे उसके आधार पर देश चलेगा, या फिर सीडब्ल्यूसी की कमिटी में जो निर्णय लिए जाएंगे, जो रिजोल्यूशन लिए जाएंगे उसके आधार पर देश चलेगा? जब पार्लियामेंट में नियम बनते हैं, जब पार्लियामेंट में कानून पारित होते हैं, उस समय कांग्रेस पार्टी के लोग सीढ़ी में बैठे रहते हैं पार्लियामेंट में, वहां वेश बदल के आते हैं, वहां अपमानित करते हैं दूसरों को। कोई साधु बन के आता है, कोई साधुओं को पीटता है, वहां अपमान किया जाता है। जिस समय कानून पारित हो रहा होता है, आप कानून के विषय में कोई संबंध नहीं रखते हैं, वहां अंदर मौजूद नहीं रहते हैं, और सीडब्ल्यूसी में आप नया कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खबरदार, खबरदार, वंदे मातरम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी। हां, हम जानते हैं, हम जानते हैं, इसी राहुल गांधी जी ने अपने एक बंद बैठक में, जिसको मीडिया के बंधुओं ने उजागर किया था, यह ऐलान किया था, हां हम मुसलमानों की पार्टी है। उन्होंने कहा था हां हम मुसलमानों की पार्टी है, मगर उसका अर्थ यह नहीं है कि देश को आप इस प्रकार वंदे मातरम के माध्यम से विभाजित करने की कोशिश करेंगे। और वंदे मातरम, जैसे गांधी जी ने कहा, यह देश का गान है, यह मंत्र राष्ट्र का है, यह हिंदू और मुसलमानों के बीच में विभाजन का तरीका नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जो हमेशा कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम संपूर्ण रूप से गाया करते थे, 1938 पे हरिपुरा अधिवेशन में इन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं गाऊंगा, क्योंकि आप संपूर्ण वंदे मातरम का पठन अलाउ नहीं कर रहे हैं। नेहरू जी के सामने मना कर दिया। और 15 अगस्त 1947 जब देश आजाद हुआ, तो वल्लभ भाई पटेल जी ने पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, जो उस समय चेन्नई में होटल वुडलैंड में मौजूद थे, उन्हें फोन किया और उन्होंने, वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि आप वंदे मातरम गाइए ऑल इंडिया रेडियो में 6:30 बजे। उन्होंने कहा एक ही शर्त में गाऊंगा, अगर पूरा वंदे मातरम गाने का मुझे अनुमति मिलेगा। पूरा वंदे मातरम उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में 15 अगस्त 1947 को गाया। कांग्रेस के अंदर भी इसको लेकर मत विभाजन है। सी राजगोपालाचारी जी ने भी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, आज हमारे रिजोल्यूशन में वो अंकित है, कि इस प्रकार से अगर जिन्ना की हर बात को मान ली जाएगी, इस प्रकार से अगर अपीजमेंट की हर बात को, तुष्टिकरण की हर बात को मान ली जाएगी और घुटने टेक दिए जाएंगे, तो वह दिन दूर नहीं जब देश सही दिशा में नहीं बढ़ेगा। और आज भी, आज इस प्रस्ताव में, आज इस रिजोल्यूशन में, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की बैठक में, पहली पदाधिकारी की बैठक में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के प्रत्येक गली नुक्कड़ कोने में जाकर वंदे मातरम का यशोगान करेगा। वंदे मातरम के विषय में लोगों को हम बताएंगे। वंदे मातरम को लेकर जिस प्रकार की कुलच्छित राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसको लेकर हम आंदोलन खड़ा करेंगे। जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने वंदे मातरम को एक एंटी इंपीरियलिस्टिक क्राइ कहा था, उस विषय को हम जनता के सामने रखेंगे और जनता को दिखाएंगे कि आखिरकार ये जो कहावत है कि अगर सियार भी कभी बाघ या सिंह का चमड़ा धारण करके अपने आप को सिंह दिखाने की कोशिश करता है, एक ना एक दिन दैट स्किन फॉल्स अपार्ट, एक ना एक दिन उसके अंदर की असलियत सामने आ ही जाती है। राष्ट्रभक्ति का लबादा ओढ़ करके कांग्रेस पार्टी आखिर अपने आप को कब तक छुपाए रखेगी? आज राष्ट्रभक्ति का लबादा पूर्णतः कांग्रेस पार्टी के ऊपर से गिर चुका है और उसके अंदर की तुष्टिकरण की राजनीति आज पूरा देश देख रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी यह होने नहीं देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सारे विषयों पर, यह क्योंकि पहला रेजोल्यूशन था, इस विषय पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, सभी विषयों पर आपको समय समय पर सूचित किया जाएगा और आप भी जान पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल नहीं कर सकता। आज हमने अपने प्रस्ताव में कहा है कि CWC अपने
1: All right, that was Sunday. Sambit Patra, senior leader of the BJP, a national spokesperson addressing a press conference after the much important meeting led by Nitin Naveen, the newly appointed president of the BJP. And he is, of course, meeting the new Nitin Naveen team. And of course, a fresh escalation, a big charge against the Congress party on Vande Mataram by the BJP spokesperson. And this is certainly not the end of the developments that are taking place. Big development, breaking news coming at this hour. The BJP attacking and launching a fresh strike against the Congress party on the Vande Mataram row. And the BJP condemns the Congress's Vande Mataram stand, the 1937 resolution as well. Must view national song and anthem equally. That's what the BJP is telling the Congress party. India to be governed, in fact, equally, and Vande Mataram is a symbol of freedom. The BJP is condemning Congress's Vande Mataram stand continuously. That's what Sandeep Patra was, in fact, explaining. Remember, the Congress has taken a stand that only the first two stanzas of the Vande Mataram will be sung during the official functions and not the entire song. And this has resulted in a fresh political escalation and a slugfest between the BJP and the Congress party. And now, of course, after the Independence Day event, where the entire song was played at the Congress headquarters by the Seva Dal, and that had sparked outrage because the Congress does not abide by the entire stanzas of the Vande Mataram, and now the BJP launching fresh attack with a resolution being passed in the very first meeting of the new team of the Nitin Naveen led BJP, saying that the Vande Mataram needs to be respected and treated equally along with the national anthem. So this is clearly a big development coming at this hour. All through the day today, the BJP meeting will be tracked very closely here on NDTV. Prime Minister Narendra Modi is also slated to visit later in the day, and that remains our top focus. It's time to end this bulletin here, but news and updates continue on the other side, because when it matters, it's always NDTV. Headlines at this hour, BJP's new team has begun work with a series of key meetings.

0: यूनाइटेड किंगडम।
1: देखिए भाई, चीफ मिनिस्टर को क्लियरेंस लेकर फ्लाइट चढ़ के बाद में जाना है, ये पहले ही भाग गए। नंबर वन। नंबर टू, इनके टूर प्रोग्राम में उनके सीएम ऑफिस के हिसाब से ये जो भी इंस्टीट्यूशंस को मिल रहे थे, ब्लेवेंटिक करके एक स्कूल है ऑक्सफोर्ड में, वो देश में एंटी सीएए राइट्स को फंडिंग किया सो इंस्टीट्यूशन है। अब्रगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का, उसके अगेंस्ट में फंडिंग किया सो है। देश में खेओस और यहाँ पर जो पीस को डिस्टर्ब करने का जो भी कार्यक्रम होगा, ये सब के लिए वो फंडिंग करते हैं। मोदी जी के खिलाफ प्रोपागंडा करने में फंडिंग करते हैं। बेसिकली ये एंटी इंडिया, एंटी नेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनके मीटिंग शेड्यूल हुए थे, वो क्यों हुए, किस कारण हुए, ये चीफ मिनिस्टर को बताना चाहिए।
2: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजेक्टिंग परमिशन टू चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी फॉर हिज फॉरेन विजिट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स terming it as inappropriate raises serious questions here in people of Telangana. What could be so inappropriate for the Chief Minister Revant Reddy's visit to the USA? Last time when Chief Minister Revant Reddy visited United States of America, he signed a 1,000 crore MOU with his own brother Anumula Jagdishwar Reddy's shell company Swachh Bio for 1,000 crores. This was raised with the ED that how can a chief minister travel to United States of America and sign a MOU in his official visit with his own brother's company? Is it not misuse of office? Is it not corruption?
3: With that, it's time for us to slip into a very quick break. Don't go anywhere. News and update continue.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
4: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
3: थ्री डेकेड्स ऑफ वॉचिंग द वर्ल्ड चेंज। ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस दैट कुडंट वेट। ऑफ टेलिंग द स्टोरीज दैट कुडंट बी इग्नोर्ड। Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV when it really matters.
4: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज़।

0: lines of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV. When it really matters.
1: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind. I pause. I reflect. I dig. Until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground.
2: I'm in Ahmedabad's Gift City today. From the lens of the regulator, how close do you think you are at this moment to achieving the dream of being Singapore, Hong Kong, New York, or London when it comes to being an international center of finance?
3: What are global investors looking at? Policy stability, there's legal certainty, and there's also a tax certainty. In the last 5 years, the government of India has pretty much put in place all these things. Our regulations are now benchmarked to the best in the world.
2: Let's take the passporting of KYC, Know Your Customer norms. Even that doesn't seem to be as easy as a lot of international bankers expect.
3: We are also doing a pilot for unassisted Aadhaar face authentication, or NRIs.
2: You've seen this model operate internationally. How far has India been able to evolve with GIFT City till this moment in time?
4: Started as a place for corporates, now wealth managers, individuals, private banking, a lot is happening.
2: Which are the instruments that you think that have now come up around GIFT City in a way that people really need to know it, and if they don't, they're missing out?
4: Let's say you're going to travel. Why do you want to pay a markup on your money you spend out, right? You should be able to spend directly from your bank account, and the bank account should be ideally able to recognize the currency.
2: अरे हमारे तो कुलचे आ गए, आप और मैं तो ये खा लेंगे, बट ऑल दीज इंटरनेशनल फैंसी पैंट HSBC टाइप बैंकर्स, आई डाउट दे विल बी ओके विद दीस कुलचास।
4: आई एग्री विद यू दैट सोशल इंफ्रा बनते बनते बनेगा, स्पीड काफी है बनने में, पहले तो ये कुलचे भी नहीं थे, अब ये कुलचे तो बढ़िया आ गए हैं।
5: Welcome back. Thank you for staying with NDTV. We're starting with an extremely heartbreaking tragedy that happened in Maharashtra. It was a family of three who died. They were trying to save their 18-year-old son. The teen, who was threatening to take his own life, he stood on the edge of a hill for nearly 3 hours. His parents, villagers, and even the police personnel repeatedly tried to persuade him to step away from the edge. But as the teenager moved closer, his father climbed up and tried to pull him back. And at that very moment, the two of them lost their balance and fell from the hill. Moments later, the panic-stricken mother also fell. As per reports, an iPhone EMI became the trigger for the tragedy. The teenager was struggling to arrange money for the monthly installment that was leading to an argument with his father. While all three died in tragic incident at the hill in Chhatrapati Sambhaji Nagar, the pet is still awaiting for their return.
6: Pitaji, वो बेटे को बचाने को गए, लेकिन वो भी उनके साथ में नीचे गिर गए. वैसे ये इसके माँ को लग गया है कि बेटा और पिताजी गुजर गए हैं, तो इसलिए उसने ही तुरंत उड़ी मार के आत्महत्या कर दी. इसमें कोशिश में पुलिस ने बहुत प्रयास किए उसका मन परिवर्तन करने के, बचाने के. उसके बाद में फायर ब्रिगेड को बुलाया, फायर ब्रिगेड ने नीचे जाली लगाई, और लेकिन जब जाली नीचे से लगाई तो ये जो आत्महत्या करने वाली व्यक्ति बार बार उसका पॉइंट चेंज कर रही थी, इसीलिए वो जाली बार बार साइड को लेना पड़ी और उसने वो मौका देख के वो आत्महत्या कर ली.
7: वही पहाड़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये वही पहाड़ है जिससे इस कुणाल चांदगुड़े नाम के लड़के ने अपनी जान देने के लिए यहाँ पहुँचा था. इस सब कहानी की शुरुआत होती है एक आईफोन से लेकर. कुणाल ने कुछ दिन पहले एक आईफोन लिया था, और वो आईफोन यूज़ करते वक्त उसकी जो किश्ती थी वो भरने की उसकी परेशानी हो रही थी. इसी को लेकर उसके पिताजी से उसकी बहस हुई. विवाद इतना बढ़ गया कि कल सुबह 10:30 बजे कुणाल अपने घर से अपनी जान देने के लिए इसी छत्रपति संभाजी नगर के वालूज परिसर के एक खौड़ा जो पहाड़ है वहाँ पे पहुँचा। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हुए और कुणाल की माँ जो संगीता है वो भी यहाँ पे पहुँची। करीब 10:30 से 11 बजे तक यहाँ पे कुछ लोग ज़्यादा इकट्ठा हो गए और उसके बाद दोपहर के 12:30 से 1 बजे तक यानी 3 घंटे के करीब कुणाल को समझाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कुणाल इसी पहाड़ के वो जो लास्ट मूवमेंट पे लास्ट जो आखिरी कोना है वहाँ पर खड़ा था और अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच उसको कई बार उसकी माँ ने रोते हुए समझाया कि ये कोशिश मत कर, हम जो भी है प्रॉब्लम बैठ कर सॉल्व करेंगे। लेकिन कुणाल अपनी जान देने की जो उसने ठान ली थी उस पर अड़ा था। और इसी बीच कुछ देर बाद वहाँ पे उसके पिता पहुँचते हैं और वो आगे बढ़कर कुणाल को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी बीच कुणाल को बचाने की कोशिश में दोनों के ही पैर फिसल जाते हैं और इसी पहाड़ से करीब 240 से 50 फीट ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं और दोनों की जगहों पे ही मौत हो जाती है। इस घटना के बाद कुछ ही देर बाद मतलब 4 से 5 सेकंड बाद उसकी माँ जो जिसका नाम संगीता है वो भी पहाड़ से कूद जाती है और तीनों की जगहों पे मौत हो जाती है।
5: And now on to news that we're tracking from the national capital. A shocking murder case has emerged from Delhi's Nihal Vihar, where a 31-year-old software engineer

0: climbed up, tried to pull him back. The two lost their balance and fell from the hill. Moments later, the panic-stricken mother also fell. As per reports, an iPhone EMI became the trigger for the tragedy. The teenager was struggling to arrange money for the monthly installment, leading to an argument with his father. All three died in the tragic incident at Khavda Hill in Chhatrapati Sambhaji Nagar. Their pet is still awaiting their return.
1: वही पहाड़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये वही पहाड़ है जिससे इस कुणाल चांदगुड़े नाम के लड़के ने अपनी जान देने के लिए यहाँ पहुँचा था। इस सब कहानी की शुरुआत होती है एक आईफोन से लेकर। कुणाल ने कुछ दिन पहले एक आईफोन लिया था और वो आईफोन यूज़ करते वक्त उसकी जो किश्ती थी वो भरने की उसकी परेशानी हो रही थी। इसी को लेकर उसके पिताजी से उसकी बहस हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि कल सुबह 10:30 बजे कुणाल अपने घर से अपनी जान देने के लिए इसी छत्रपति संभाजी नगर के वालूज परिसर के एक खौड़ा जो पहाड़ है वहाँ पे पहुँचा। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हुए और कुणाल की माँ जो संगीता है वो भी यहाँ पे पहुँची। करीब 10:30 से 11 बजे तक यहाँ पे कुछ लोग ज़्यादा इकट्ठा हो गए और उसके बाद दोपहर के 12:30 से 1 बजे तक, यानी 3 घंटे के करीब कुणाल को समझाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कुणाल इसी पहाड़ के वो जो लास्ट मूवमेंट पे, लास्ट जो आखिरी कोना है वहाँ पर खड़ा था और अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच उसको कई बार उसकी माँ ने रोते हुए समझाया कि ये कोशिश मत कर, हम जो भी है प्रॉब्लम बैठ कर सॉल्व करेंगे। लेकिन कुणाल अपनी जान देने की जो उसने ठान ली थी उस पर अड़ा था। और इसी बीच कुछ देर बाद वहाँ पे उसके पिता पहुँचते हैं और वो आगे बढ़कर कुणाल को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी बीच कुणाल को बचाने की कोशिश में दोनों के ही पैर फिसल जाते हैं और इसी पहाड़ से करीब 240 से 50 फीट ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं और दोनों की जगहों पे ही मौत हो जाती है। इस घटना के बाद कुछ ही देर बाद, मतलब 4 से 5 सेकंड बाद, उसकी माँ जो जिसका नाम संगीता है वो भी पहाड़ से कूद जाती है और तीनों की जगहों पे मौत हो जाती है।
0: What an unfortunate story being reported from Sambhaji Nagar. Well, that report and much more is up on our website. With that, it's a wrap on this edition. Thank you for watching.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100%

0: settlement at the Khavda Hill in Chhatrapati Sambhaji Nagar, their pet at home is awaiting their return.
1: वही पहाड़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये वही पहाड़ है जिससे इस कुणाल चांदगुड़े नाम के लड़के ने अपनी जान देने के लिए यहाँ पहुँचा था। इस सब कहानी की शुरुआत होती है एक आईफोन से लेकर। कुणाल ने कुछ दिन पहले एक आईफोन लिया था और वो आईफोन यूज़ करते वक्त उसकी जो किस्ती थी वो भरने की उसकी परेशानी हो रही थी। इसी को लेकर उसके पिताजी से उसकी बहस हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि कल सुबह 10:30 बजे कुणाल अपने घर से अपनी जान देने के लिए इसी छत्रपति संभाजी नगर के वालूज परिसर के एक खौड़ा जो पहाड़ है वहाँ पे पहुँचा। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हुए और कुणाल की माँ जो संगीता है वो भी यहाँ पे पहुँची। करीब 10:30 से 11 बजे तक यहाँ पे कुछ लोग ज़्यादा इकट्ठा हो गए और उसके बाद दोपहर के 12:30 से 1 बजे तक यानी 3 घंटे के करीब कुणाल को समझाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कुणाल इसी पहाड़ के वो जो लास्ट मूवमेंट पे लास्ट जो आखिरी कोना है वहाँ पर खड़ा था और अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच उसको कई बार उसकी माँ ने रोते हुए समझाया कि ये कोशिश मत कर, हम जो भी है प्रॉब्लम बैठ कर सॉल्व करेंगे। लेकिन कुणाल अपनी जान देने की जो उसने ठान ली थी उस पर अड़ा था। और इसी बीच कुछ देर बाद वहाँ पे उसके पिता पहुँचते हैं और वो आगे बढ़कर कुणाल को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी बीच कुणाल को बचाने की कोशिश में दोनों के ही पैर फिसल जाते हैं और इसी पहाड़ से करीब 240 से 50 फीट ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं और दोनों की जगहों पे ही मौत हो जाती है। इस घटना के बाद कुछ ही देर बाद मतलब 4 से 5 सेकंड बाद उसकी माँ जो जिसका नाम संगीता है वो भी पहाड़ से कूद जाती है और तीनों की जगहों पे मौत हो जाती है।
0: Well, that was a ground report that we got for you, but what a dispute over iPhone where 3 people lost their life, parents and a son. It happened on August 2026 in Maharashtra. The family fight over the iPhone, it turned tragic. Kunal, his parents, they fell from the hill. Now, in December 2025, in Jalgaon, UP, the family couldn't afford the iPhone and the girl allegedly dies by suicide. These are multiple instances that we are narrating to you, how teenagers have been obsessed with their phones, specifically a particular brand because it's very fashionable to have that brand, and family couldn't afford the phone, so the girl allegedly dies by suicide. And once again, we talk about an incident of the 22nd of August 2025. This happened in Aligarh, in Uttar Pradesh. Father refused to buy an iPhone. Teenager allegedly dies by suicide. Cut to July 2024, Kamote, Maharashtra. Another incident where father refused 1.5 lakh rupees for an iPhone and teen allegedly dies due to suicide. All these instances tell us about the low emotional threshold that most teenagers have. The inability to take no for an answer, the inability to handle difficult emotions, and that is leading to these unfortunate suicides in especially amongst youth and teenagers. India, unfortunately, has one of the highest numbers of suicide rates across the world when it comes to youngsters and teenagers. Let's now talk about a shocking murder case that has emerged from Delhi's Nihal Vihar, where a 31-year-old software engineer allegedly died after being brutally assaulted by his in-laws following a marital dispute. Vinay Gupta, who worked at Adobe in Noida, was allegedly attacked inside his Lakshmi Park home. His family claims that 6 of his in-laws were present. The assault continued despite his mother's pleas. Vinay was rushed to hospital where he was declared dead. Police have detained 4 suspects. A forensic team has also been examining the crime scene. Murder case has been registered. Investigators are now probing the dispute, the sequence of events and the role of everyone who was involved.
2: Joining me right now is Vinay Gupta's sister Kirti Gupta. Kirti ji, ye kal kitne baje ka case hai, kya exactly hua tha, kis baat pe ye ladai shuru hui?
3: अरे ये बात 3-4 दिन पहले की है। हमारे छोटे बाबू को यहाँ पे चोट लगी हुई थी, हमने उसको मेरे भाई ने रेखा को बोला भाभी को कि यहाँ पे दवाई लगा दे, बाबू के 10 दिन मैंने लगा दी, अब 10 दिन तू लगा दे, तेरी भी जिम्मेदारी होगी। इस बात पे उसने अपने भाई बुला लिए कि मेरे को बोल कैसे दिया कि बच्चे के दवाई लगा दे। मेरे को कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं बहुत पैसे वाले की बहन हूँ। वो बार बार बोलती थी कि मैं अपने भाई को डंडे ला के तेरे को पिटवाऊंगी। उसने अपने भाई बुलाए और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे भाई का गला दबा दिया। मेरे भाई के घुटने दे दे के छाती पे पेट पे चढ़ के कूद गए 100-100 किलो के लोग। मेरा भाई वहीं खत्म कर दिया। मेरी मम्मी को बहुत मारा, मेरे पापा को अलग मारा।
4: दरवाजा खुला था, यहाँ से आए सीधे ऊपर। इसके पापा बोले कि आगे में तो कोई बात नहीं, रिश्तेदार है, कोई बात नहीं, बिठाओ। मैं कहा बेटा ऐसी चलाते ला पानी दे। मैं तो उन्हें पानी का गिलास देने गई, उन्हें मेरा चोरा दाब लिया, बेड के ऊपर गिर गया, उसका गिट्टी घोट दी, उसके पेट में लात गुस्से मारे, इसके पापा दूर फेंक दिए। मैं बचाने गई, मैं भी दूर फेंक दी। फिर मैंने यार पड़ोसियों का आवाज लगाई, इतने पड़ोसी आए, उन्होंने तो मेरा चोरा तुम मना कर दिया। हॉस्पिटल जाते जाते रस्ते में खत्म हो गया मेरे एक बच्चा का।
0: Shifting our focus to FDA and its actions in the state of Maharashtra that have grabbed headlines in the last few weeks. Maharashtra FDA goes on a major food safety sweep, putting food giants, eateries under the scanner, 89 outlets raided, licenses suspended, serious quality violations uncovered, high-profile food chains to elite clubs. The FDA action exposes glaring lapses. Safety violations, poor hygiene, pest infestations trigger swift action across the state. Now, the crackdown stretches across Maharashtra, targeting food adulteration, unsafe kitchens, banned tobacco. From major seizures to arrests, the FDA is tightening the net statewide.
5: You don't have an option. You have to live by it, whatever it is.
6: But the action FDA is doing now, that if you don't serve clean food, the hotel's license will be suspended.
5: Correct. It is a good step. Though it is a late, they are trying to do something.
6: Right.
5: Hopefully everyone will follow rules, regulations, and we hope that everyone will be served with a very good hygiene food.
6: When we talk about street food, the artificial color is a problem. Kitne Manchurian ho gaya, Chinese food ho gaya, usme artificial colors bhi milaye jaate hain.
7: हाँ मिलाए तो जाते हैं, बट वो हमको पता नहीं चलता है कि यूजुअली कि मिलाए जा रहे हैं कि नहीं। बट जैसे कि अभी मैं पूना से आया हूँ ये वड़ा पाव खाने के लिए, तो पूना में भी ऐसे गार्डन वड़ा पाव करके वहाँ पे भी बहुत भीड़ लगी हुई रहती है। तो वी यूजुअली नो कि 19-20 होता है हाइजीन के बारे में, बट द फूड टेस्ट गुड एज लॉन्ग एज वी डोंट गेट टू नो, बिकॉज द अथॉरिटी गेट्स टू नो व्हाट्स इनसाइड, वी डोंट सी दैट, राइट? सो दैट्स हाउ वी जज इट ऑन द टेस्ट। सो हमको नहीं पता चलता कि अंदर क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो एज लॉन्ग एज इट्स टेस्टिंग गुड, वी फील इट्स सेफ टू इट। सो
6: यू वांट टू ऐड समथिंग टू दैट?
8: नो,
6: आई मीन द टेस्ट ऑफ द फूड इज वन पार्ट, बट हाइजीन इज आल्सो इंपॉर्टेंट।
8: ऑफ कोर्स इट इज,
6: राइट?
8: या ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट।
6: यू आर रेसिडेंट ऑफ मुंबई?
8: नो, आई एम नॉट।
0: Pune's political temperature is rising ahead of Rahul Gandhi's student outreach event. NSUI ABVP workers clashed at the COEP hostel campus, prompting heavy police deployment. The flashpoint: ABVP alleged Congress and NSUI workers entered the hostel and forced female students to register for Rahul Gandhi's Chhatron Ki Goonj event. The clash has now taken a legal turn. There's an FIR reportedly naming 50 Congress and NSUI workers. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has now alleged that the chaos was pre-planned, politically driven. Fadnavis has accused the Congress of misusing students for political gains and claiming that only selected students and planted influencers were allowed to attend Rahul Gandhi's event.
9: राहुल गांधी इनका कार्यक्रम ये मात्र एक इवेंट है, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को यह काम दिया गया है। आने वाली जो छात्राएं हैं वो केवल कांग्रेस के जो कॉलेजेस हैं, जिस कॉलेजेस का मैनेजमेंट कांग्रेस के नेताओं के पास है, वहीं से छात्राएं आए, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। और आज तो उनकी पोल खुल गई, जिस समय ये ध्यान में आया कि किस प्रकार से इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे रहे, 30,000 रुपए दे रहे, और उनको ये कह रहे हैं कि आप आइए और केवल पॉजिटिव दिखाइए, निगेटिव कुछ मत दिखाइए।
0: All that story and much more is up on our website. With that, it's a wrap on this edition of NDTV. Thank you so much for watching.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
7: Across the country,
8: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
9: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht. सेहतमंद हर रोज।
8: थ्री डेकेड्स ऑफ

0: But beyond the haze of the digital world, where criminals disappear, there is another force at work, equally silent, equally ferocious in its intent. While criminals use the dark net to hide, investigators troll this hidden world looking for clues to their whereabouts. The cyber sleuths painstakingly follow trails that may cross regions, countries, identities, and time zones. It is relentless pursuit, unpeeling the layers of the internet, unmasking the dark side of the digital world. So what exactly is this hidden internet? How does it work? Who is using it? And how much of the crime happening here can investigators actually trace? This is the world beneath the internet that you know. The internet most people use every day is the World Wide Web. If a crime is committed there, investigators often have relatively straightforward methods to identify suspects. But much of the concern surrounding cybercrime today focuses on the dark net, which cannot be accessed through standard browsers like Chrome or Safari. It requires special software, such as the Tor, the Onion router. Just as an onion has many layers, users' identities are concealed behind multiple layers of routing and encryption. This anonymity is one reason the technology has attracted criminal misuse.
1: देखिए जो इंटरनेट है वो एक तरह से आइसबर्ग है जो उसका पोर्शन आप देखते हैं जिसको हम सरफेस नेट बोलते हैं वो लगभग 5% या 10% के बीच में है जिसमें आपका सारा गूगल सारा यूट्यूब सारी टाइप की सरफेस वेबसाइट्स ब्राउजिंग सब कुछ होता है और इसके लिए कॉमन ब्राउजर्स जैसे क्रोम इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह यूज होते हैं लगभग 80% से ज़्यादा है इंटरनेट का वो पोर्शन जिसको हम डीप वेब बोलते हैं या डीप नेट बोलते हैं डीप नेट वो पोर्शन ऑफ इंटरनेट है जिसके लिए आपको स्पेशल क्रेडेंशियल्स चाहिए होते हैं जैसे कि लॉग इन पासवर्ड प्रोटेक्टेड जिसमें आपके सारे इंश्योरेंस रिकॉर्ड बैंकिंग रिकॉर्ड्स ईमेल्स इसके लिए भी आपको कोई स्पेशल ब्राउजर की ज़रूरत नहीं होती है डार्क नेट वो लगभग 7% से 8% ऐसा पोर्शन ऑफ इंटरनेट है जिसके लिए आपको एक स्पेशल टाइप का ब्राउजर चाहिए जिसको हम द अनियन राउटर कहते हैं टॉर या द अनियन राउटर क्यों उसको अनियन राउटर कहा जाता है क्योंकि वो ब्राउजर आपकी एनोनिमिटी एंश्योर करता है
0: एंड इट इज दिस एनोनिमिटी दैट मेक्स द डार्क नेट सो डिफिकल्ट टू पुलिस अ यूजर्स रियल लोकेशन कैन बी कंसील्ड The digital trail can pass through multiple countries before reaching its destination.
1: Tor में अगर कोई आपको मैसेज अपने नेबर को भी भेजना है जो आपके बगल में बैठा हुआ तो वो 20 कंट्रीज के थ्रू हॉप ऑन होते हुए जिसको हम कहते हैं मल्टी प्रॉक्सी मल्टी प्रॉक्सी के प्रोसेस से आते हुए आपके नेबर के पास जाएगा तो उसको बैक ट्रैक करना बहुत मुश्किल होगा तो बैक ट्रैक करना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है इसीलिए इसको द अनियन राउटर कहते हैं
0: बट व्हाट डज दिस हिडन वर्ल्ड लुक लाइक
2: तो यहाँ पर लेफ्ट एंड सोल्ड यहाँ पर सोल्ड कितना बता रहा है लेफ्ट यूनिट मतलब ये सोल्ड हो
3: चुका
2: सोल्ड हो चुका
0: दिस इज दिलशान शेख अ टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट सिंस चाइल्डहुड He became deeply interested in understanding the internet. What started as curiosity eventually brought him onto the radar of cyber experts. Today he assists law enforcement as an ethical hacker. What Dilshan showed us on the dark net

0: एक यूजर आईडी के नाम पे होता है एंड दैट्स ऑल। इसमें ना कोई केवाईसी होती है ना कोई मेल दिया जाता है। आप एक नाम सेलेक्ट कर लीजिए और उससे पासवर्ड बना दीजिए, आपका अकाउंट तैयार हो जाएगा।
1: पेमेंट तो कैसे होती है
0: इसमें? जो पेमेंट होता है वो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी में होता है, ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस के ऊपर, बिटकॉइंस वगैरह में। तो ये सारे लॉग्स, ये देखिए पेपल के लॉग्स है इसके अंदर। तो ये सारे लॉग्स होते हैं बैकएंड के, जो अटैकर के लिए, जो हैकर्स के लिए बहुत, जो स्कैमर के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। तो ये सारा डेटा होता है। ये आईडी कार्ड्स है जो अवेलेबल है अलग अलग कंट्रीज के, जो यूज होता है। इसको फ्रॉड के तौर पे आप यूज कर लो, इसको सिम कार्ड निकालने के तौर पे यूज कर लो।
1: क्या हम चेक कर सकते हैं अंदर जाके?
0: जी, रियल कार्ड।
1: और कितना बिक चुका है?
0: इतने यूनिट,
1: 22,000 यूनिट्स बिक चुकी हैं। तो ये डार्क नेट पे आधार कार्ड अवेलेबल है।
0: हाँ,
1: लोगों के
0: लेकिन 50 प्लस इंडियन आधार कार्ड एंड पैन कार्ड डॉक्यूमेंट ऑल वैलिड विद ऑल इंफॉर्मेशन। एक यूजर आईडी में डालता हूँ, सही है।
1: मतलब आपका ईमेल,
0: हाँ, यहाँ पर
1: अकाउंट कब करेक्ट, उसका पासवर्ड लीक हुआ है।
0: देखिए एक जगह ब्रीच हुआ है। अगर मुझे इनका, देखिए अभी यहाँ से पासवर्ड मुझे शो कर दें, मुझे सर्विस पाई करनी पड़ेगी, तो मुझे पासवर्ड भी मिल जाएगा। और डेफिनेटली उसे ये पता
1: तो
0: नहीं होगा,
1: लीक हो चुका है, तो आप
0: उसने पासवर्ड चेंज नहीं किया हुआ, इन शॉर्ट, तो आई कैन गेट एक्सेस टू द अकाउंट। एंड अराउंड 13 बिलियन अकाउंट इन लीक डेटाबेस। ठीक है,
1: तो ये बिलियन का लीक डेटाबेस इनके पास।
0: करेक्ट। अभी देखिए ये काउंटर फीडिंग नोट्स है, एचक्यू प्रिंट्स करके है नाम से। तो ये डिफरेंट सर्विसेज बेच रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल। अभी फॉर एग्जांपल आपको सोशल मीडिया अकाउंट हैक करवाना है, तो ये एक एक्स वाई जेड वेबसाइट है, $100 ले रहा है। इंस्टाग्राम पे क्लिक करो,
1: टिकटॉक,
0: ठीक है। ये यहाँ पर अगर आपको अनोनिमस नंबर्स वगैरह बाय करने हैं, जो भी सिम कार्ड्स वगैरह बाय करने हैं, तो ये नंबर्स मिलते हैं। जैसे कि टैक्स नाउ के अकाउंट है, जो टैक्स नाउ वहाँ पर अलग होता है, तो यहाँ पर मॉडर्ड मतलब किसी के नाम का आपको मिल जाएगा, जो आप यूजर आईडी पासवर्ड, एक किस्म का डिजिटल सिम भी बोल सकते हैं,
1: जो साइबर फ्रॉड के लिए क्रिमिनल
0: यूज करते हैं।
1: और ये कितने में बिक रहा है?
0: $10, मतलब इंडियन ₹700। इसके पीछे कौन है वो रिवील नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आइडेंटिटी होती है वो यूजर नेम होता है।
2: What Dilshan warns us about has recently happened with Bank of Baroda data. Bank of Baroda had to initiate a forensic investigation into a breach involving critical data, with reports of around 1 terabyte of data being leaked. The leaked material allegedly includes customer information, identity documents, loan papers, and internal audit reports. This incident adds to a series of cybersecurity breaches involving major Indian companies and institutions in recent months. Thousands of websites here openly operate as marketplaces for criminal activity. Transactions are conducted through cryptocurrency, making it difficult for law enforcement agencies to trace the people behind them. Maharashtra Cyber says its investigations reveal just how large this underground ecosystem can be.
1: Sir, ये स्क्रीन पे हम क्या देख रहे हैं इस वक्त?
3: मैम, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि लाइव जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं अक्रॉस वर्ल्ड। सो यू कैन सी एज ऑफ नाउ टोटल अटैक्स व्हिच इज हैपनिंग करंटली अक्रॉस वर्ल्ड, व्हिच इज द नंबर इज रिफ्लेक्टिंग ऑन योर स्क्रीन, दैट इज 10,16,00,000
1: डिफरेंट
3: प्लेटफॉर्म्स है डार्क वेब पे। सो दीज आर द फ्यू प्लेटफॉर्म्स एंड व्हाट दे आर सेलिंग, ड्रग्स, कार्डिंग डिटेल, काउंटरफिट करेंसी। सो दीज आर द नंबर ऑफ डार्क वेब लिस्टिंग्स। सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं कि ड्रग्स सेल हो रहे हैं डार्क वेब पे मीडियम।

0: on the dark web. According to investigators, anti-social elements and terror-linked actors have also attempted to misuse such digital platforms.
1: Dark web ke jo criminals hain, wo ek dark web ki anonymous email service use kare. जिस सर्विस का यूज़ करने का उन्हें बेनिफिट ये होता है कि उनके ईमेल्स को इजीली ट्रेस नहीं किया जा सकता है। जैसे आपको पता होगा कुछ सालों पहले जीमेल आउटलुक का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे, और वो इजीली ट्रेस भी कर सकती थी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। बट नाउ दे आर यूजिंग द एनोनिमस ईमेल सर्विस विच इज़ अवेलेबल ऑन डार्क वेब। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। इसी के तरह कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है डार्क वेब पे जिसका इस्तेमाल करके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं।
2: ओके, तो ये डार्क वेब नहीं है लेकिन डार्क वेब के फीचर
1: से, जैसे एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है एक फीचर है इसके, इजीली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से डिकोड नहीं कर पाते इनके SMS।
0: For investigators, the challenge is not only identifying what is happening online, but finding the people behind it. This is a dark web chat room, where users operating under fake identities interact anonymously, often attempting to buy or sell illegal goods and services.
3: क्रिमिनल को अगर पकड़ना है तो क्रिमिनल के ऐसे सोचना चाहिए। उस हिसाब से हमें क्या करना है कि ऐसे ये जो चल रही है जो क्रिमिनल है, तो हमने भी उस क्रिमिनल के जैसे मैंने चैटिंग स्टार्ट कर दी, तो अगर यहाँ से मुझे कोई रिप्लाई देता है तो कौन, तो फिर मैं उसके साथ जेन्युइन चैट करूंगा।
2: आप उसके साथ यहाँ पे इंगेज करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो
3: कुछ डेटा, उसका ओरिजिनल डेटा रिवील कर दे, और उस अगर कोई भी अगर छोटी सी मिस्टेक वो कर दे तो फिर हम उस तक पहुँच सकते हैं। उनको भी मालूम है, क्रिमिनल को भी मालूम है कि हम ऐसे ऐसे चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम पकड़ा नहीं जाए, पर हमें भी उतना एडवांस टेक्नोलॉजी में जान के कि अगर उन्होंने टॉल भी यूज़ किया है तो वो टॉल में फिर जैसे मैंने बोला कि क्रिमिनल की सोच के जैसे हम देखेंगे तो हाँ, तो एटलीस्ट एक क्रिमिनल के पास अगर हमें जाना है तो उससे उसको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा।

0: In this underground marketplace, firearms, explosives, poison, and drugs are reportedly traded with few identity checks.
1: तो मैं गन्स नॉर्मल सर्च किया और हमारे पास मल्टीपल वेबसाइट्स यहाँ पे सामने आ गए. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, एम्युनिशन के, ड्रोन्स के, यूएवीज के, एक्सप्लोजिव्स के, गन्स के, नाइव्स. तो नॉर्मल मुझे सिर्फ बेसिक डिटेल डालनी है कि मेरा नाम क्या है. वो मैं गलत डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ, जैकब डाल सकता हूँ, मेरा नाम कुछ और होगा.
2: और इसके साथ साथ जो पेमेंट मोड है वो क्रिप्टो है, तो ये ओवरऑल एक प्रोटेक्ट करता है क्रिमिनल को.
1: यस, क्रिप्टो अपने आप में एक एड्रेस की तरह होता है. वो आपको एड्रेस से पता चलेगा उसके पीछे पर्सन कौन है. तो वॉलेट प्राइवेट वॉलेट हो सकते हैं, वो यूज कर रहा होगा, जिससे कोई टारगेट नहीं कर पाएगा.
2: पर यहाँ पे लोग स्कैम भी तो होते होंगे.
1: हाँ, होता है.
2: अगर वॉलेट लिंक किया तो स्कैमर्स तो भरे हुए हैं यहाँ पे.
1: हाँ,
2: अगर इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो
1: ऑब्वियसली. जैसे यहाँ पे बहुत सारे आपको सर्विसेज मिलते हैं लाइक हिटमैन्स के, जो मोस्टली वो ऐसे होते हैं जो फेक होते हैं. वो आपसे बस पैसा लेते हैं, स्कैम करते हैं, या फिर कुछ और, हम आपको अकाउंट्स बेचेंगे या कुछ आपको डेटा चाहिए तो आपसे वो डिटेल्स पहले ले लेंगे. हो सकता है कि वो आपके कंप्यूटर में भी एंटर कर जाएं किसी न किसी तरीके से, अगर आप प्रॉपरली वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं डार्क वेब को, टॉर को.

0: rapidly. Today, investigators say a substantial portion of dark net activity is associated with unlawful trade and cybercrime.
1: कुछ साल पहले की घटना मैं आपको बता रहा हूँ. हमें पता चला कि अब जो है टेररिस्ट फिदाइन अटैक नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें उनके जान जाने की खतरा है. वो कह रहे हैं सबसे अच्छा अटैक है ड्रोन अटैक्स कीजिए और उस ड्रोन में हल्का सा आरडीएक्स लगा दीजिए जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाए आफ्टर इट्स ऑपरेशन. पहले वो आरडीएक्स गिराए फिर उसी आरडीएक्स से खुद भी डिस्ट्रक्ट सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाए. ये चैट फोरम में डिस्कस हो रही हैं ये बातें बाय सर्टेन एंटी नेशनल एलिमेंट्स. नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड थ्रू डार्कनेट हु दीज एंटी नेशनल एलिमेंट्स आर. आफ्टर फ्यू मंथ्स ओनली ड्रोन अटैक्स स्टार्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड.
2: एंड नाउ मोर किस साल की बात है सर?
1: ये मैं आपको 2019 की बता रहा हूँ. बट नाउ ड्रोन अटैक्स आर द नॉर्म. जैसे कि आप देख रहे हैं ज्यादातर वॉर्स भी
2: के जरिए
1: हमारे ड्रोन से हो रहे हैं.
3: दिस रिपोर्ट हैज बीन एन एफर्ट टू मेक यू अवेयर ऑफ द रिस्क्स एसोसिएटेड विद द डार्क नेट. स्टे कॉशियस. अवॉइड अटेम्प्टिंग टू एक्सेस अननोन क्रिमिनल मार्केट प्लेसेस और सस्पिशियस ऑनलाइन नेटवर्क्स. Cyber criminals can target your devices, compromise your privacy, and steal your personal information. Stay alert, stay safe, and use the internet responsibly. I am Pooja Bharadwaj, and I filed this special report for NDTV.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे।
4: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
5: देश का टायर जेके टायर।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।
8: सबका राजा आर्थोर मसाला।
9: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
10: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
11: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
12: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul. Covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
13: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli. Swadisht, sehatmand, har roz.
14: Bade bade imtihanon se guzarta hai. Waqt tarashta hai jise. To jaane kya kya na karta hai. जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
12: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Telling the story.

0: Cuando está en ese
1: देश का टायर जेके टायर
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: Sí.
1: देश का टायर जेके टायर
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way. थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्थोर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमोनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
6: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
7: अक्रॉस द कंट्री
8: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया। Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
6: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht. सेहतमंद हर रोज।
8: 3 decades of watching the world change, of asking the questions that couldn't wait, of telling the stories that couldn't be ignored, of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: कर रही है उसको लेकर हम आंदोलन खड़ा करेंगे। जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने वंदे मातरम को एक एंटी इंपेरियलिस्टिक क्राई कहा था, उस विषय को हम जनता के सामने रखेंगे।
1: ये वंदे मातरम को बहुत बैकलैश हुआ है। वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, ये जब उन लोगों ने ऐलान किया, रेजोल्यूशन पास किया, तब बहुत बड़ा बैकलैश हुआ है, जनता के मन में आक्रोश पैदा हुआ है। तो ये आक्रोश डाइवर्ट करने के लिए, इशू डाइवर्ट करने के लिए पूरा ड्रामाबाजी है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। और एक अपोजिशन लीडर पुलिस स्टेशन में जाके अगर नहीं करते तो बहुत अलग अलग रास्ता है, अलग अलग इसके लिए वेज एंड मीन्स है। ये सब छोड़ के धरना पर बैठना, अटेंशन ड्रॉ करना, और अभी भी मैं एक्टिव हूँ ये दिखाने के लिए, शायद वो अभी शायद फॉरेन जाते होंगे क्योंकि सेशन खत्म हुआ है, वो फॉरेन जाने से पहले थोड़ा ड्रामाबाजी करके जो 15-20 दिन, कभी वो 20-30 दिन जाते हैं ना फॉरेन, किसी को भी नहीं बताते हैं, उसका एब्सेंस ही तुरंत फील नहीं, उन्होंने एजिटेशन किया था, कहते यही मन में लोग रखते हैं, ऐसे भ्रम में ये अपने ही भ्रमालोक में रहते हुए ये सब करते हैं।
2: Telangana Chief Minister Revanth Reddy's proposed US visit has triggered a political row after Minister of External Affairs denied clearance for the program. The MEA said that the visits by chief ministers require political clearance and the proposed US program was not considered appropriate for the office held and the purpose of the visit. The ministry, however, clarified that Reddy's UK visit has been cleared. The BJP has questioned why chief ministers' proposed meetings included institution it alleges to have links, activities opposing India's interests, and also his meet with the Oxford professor Maya Tudor. Revanth Reddy meanwhile hit back at the political criticism, saying that the future of the youth development and nation building should remain above politics and electoral considerations.
3: Mattu Telangana Andhra Jana visheshavagi America dalli bahalashtu enaraisida avaru illi enadru invest madbekadre ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಆಂಧ್ರದವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇವೆ, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ, ಯುಕೆಗೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡ್ಬೋದು ಅಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಡಿನೈ ಮಾಡೋದು ಇದು ಅನ್ಯಾಯ.
4: Let me say that the visit of chief ministers, as indeed of other dignitaries, are assessed by the Ministry of External Affairs in order to accord political clearance. The program proposed in such cases should be appropriate to the office held and the purpose of the visit. In this particular case, that was not so in respect of the United States, and therefore the clearance was denied, not given. Incidentally, let me also tell you that clearance was given for his visit to the United Kingdom.
5: देखिए भाई, चीफ मिनिस्टर को क्लियरेंस लेकर फ्लाइट चढ़ के बाद में जाना है, ये पहले ही भाग्य है, नंबर वन. नंबर टू, इनके टूर प्रोग्राम में उनके सीएम ऑफिस के हिसाब से ये जो भी इंस्टीट्यूशंस को मिल रहे थे, ब्लेवन टिक करके एक स्कूल है ऑक्सफोर्ड में, वो देश में एंटी सीएए राइट्स को फंडिंग किया सो इंस्टीट्यूशन है. अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का, उसके अगेंस्ट में फंडिंग किया सो है. देश में खेओस और यहाँ पर जो पीस को डिस्टर्ब करने का जो भी कार्यक्रम होगा, ये सब के लिए वो फंडिंग करते हैं. मोदी जी के खिलाफ प्रोपागंडा करने में फंडिंग करते हैं. बेसिकली ये एंटी इंडिया, एंटी नेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनके मीटिंग शेड्यूल हुए थे, वो क्यों हुए, किस कारण हुए, ये चीफ मिनिस्टर को बताना चाहिए.
6: Government of India rejecting permission to Chief Minister Revanth Reddy for his foreign visit to United States of America and Ministry of External Affairs, terming it as inappropriate, raises serious questions here in people of Telangana. What could be so inappropriate for the Chief Minister Revanth Reddy's visit to the USA? Last time when Chief Minister Revanth Reddy visited United States of America, he signed a 1,000 crore MOU with his own brother, Anumula Jagdishwar Reddy's shell company Swachh Bio for 1,000 crores. This was raised with the ED that how can a chief minister travel to United States of America and sign a MOU in his official visit with his own brother's company? Is it not misuse of office? Is it not corruption?
2: A heartbreaking tragedy in Maharashtra where a family of three died trying to save their 18-year-old son, the teen threatening to take his own life. He stood on the edge of a hill for nearly 3 hours. His parents, villagers, police personnel, everyone repeatedly tried to persuade him to step away from the edge of the cliff. But as the teenager moved closer, his father climbed up and tried to pull him back. The two lost their balance, fell from the hill. Moments later, a panic-stricken mother also fell. As per the reports, an iPhone EMI became the trigger for the tragedy. The teenager was struggling to arrange money for the monthly installment, leading to an argument with his father. All three unfortunately died in the tragic incident at the Khavda Hill in Chhatrapati Sambhajinagar. Their pet at home is still awaiting their return.
7: वही पहाड़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये वही पहाड़ है जिससे इस कुणाल चांदगुड़े नाम के लड़के ने अपनी जान देने के लिए यहाँ पहुँचा था। इस सब कहानी की शुरुआत होती है एक आईफोन से लेकर। कुणाल ने कुछ दिन पहले एक आईफोन लिया था और वो आईफोन यूज़ करते वक्त उसकी जो किस्ती थी वो भरने की उसकी परेशानी हो रही थी। इसी को लेकर उसके पिताजी से उसकी बहस हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि कल सुबह 10:30 बजे कुणाल अपने घर से अपनी जान देने के लिए इसी छत्रपति संभाजीनगर के वालूज परिसर के एक खौड़ा जो पहाड़ है वहाँ पे पहुँचा। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हुए और कुणाल की माँ जो संगीता है वो भी यहाँ पे पहुँची। करीब 10:30 से 11 बजे तक यहाँ पे कुछ लोग ज़्यादा इकट्ठा हो गए और उसके बाद दोपहर के 12:30 से 1 बजे तक यानी 3 घंटे के करीब कुणाल को समझाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कुणाल इसी पहाड़ के वो जो लास्ट मूवमेंट पे लास्ट जो आखिरी कोना है वहाँ पर खड़ा था और अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच उसको कई बार उसकी माँ ने रोते हुए समझाया कि ये कोशिश मत कर, हम जो भी है प्रॉब्लम बैठ कर सॉल्व करेंगे। लेकिन कुणाल अपनी जान देने की जो उसने ठान ली थी उस पर अड़ा था। और इसी बीच कुछ देर बाद वहाँ पे उसके पिता पहुँचते हैं और वो आगे बढ़कर कुणाल को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी बीच कुणाल को बचाने की कोशिश में दोनों के ही पैर फिसल जाते हैं और इसी पहाड़ से करीब 240 से 50 फीट ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं और दोनों की जगहों पे ही मौत हो जाती है। इस घटना के बाद कुछ ही देर बाद मतलब 4 से 5 सेकंड बाद उसकी माँ जो जिसका नाम संगीता है वो भी पहाड़ से कूद जाती है और तीनों की जगहों पे मौत हो जाती है।
8: पिताजी वो बेटे को बचाने को गए लेकिन वो भी उनके साथ में नीचे गिर गए। वैसे ये इसके माँ को लग गया है कि बेटा और पिताजी गुजर गए हैं, तो इसलिए उसने ही तुरंत उड़ी मार के आत्महत्या कर दी। इसमें कोशिश में पुलिस ने बहुत प्रयास किए उसका मन परिवर्तन करने के, बचाने के। उसके बाद में फायर ब्रिगेड को बुलाया, फायर ब्रिगेड ने नीचे जाली लगाई और लेकिन जब जाली नीचे से लगाई तो ये जो आत्महत्या करने वाली व्यक्ति बार बार उसका पॉइंट चेंज कर रही थी, इसीलिए वो जाली बार बार साइड को लेना पड़ी और उसने वो मौका देख के वो आत्महत्या कर ली।
2: Well, that story and much more lined up on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.
9: Electricity bill paid.
10: Really?
9: Your mobile recharge is done.
10: How?
9: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to ₹300 every month. Use Bheem app to pay.
10: It's the Mahi way.

0: में जाके अगर नहीं करते तो बहुत अलग अलग रास्ता है, अलग अलग इसके लिए वेज एंड मींस है। ये सब छोड़ के धरना पर बैठना, अटेंशन ड्रॉ करना, और अभी भी मैं एक्टिव हूँ ये दिखाने के लिए। शायद वो अभी शायद फॉरेन जाते होंगे क्योंकि सेशन खत्म हुआ है। वो फॉरेन जाने से पहले थोड़ा ड्रामाबाजी करके जो 15-20 दिन, कभी वो 20 दिन 30 दिन जाते हैं ना फॉरेन, किसी को भी नहीं बताते हैं, उसका अब्सेंस ही तुरंत फील नहीं, उन्होंने वो एजिटेशन किया था, कहते यही मन में लोग रखते हैं, ऐसे भ्रम में या अपने ही भ्रमालोक में रहते हुए ये सब करते हैं।
1: Telangana Chief Minister Revanth Reddy's proposed US visit has triggered a political row after Minister of External Affairs denied clearance for the program. The MEA said that the visits by chief ministers require political clearance and the proposed US program was not considered appropriate for the office held and the purpose of the visit. The ministry, however, clarified that Reddy's UK visit has been cleared. The BJP has questioned why chief ministers' proposed meetings included institution it alleges to have links, activities opposing India's interests, and also his meet with the Oxford professor Maya Tudor. Revanth Reddy, meanwhile, hit back at the political criticism, saying that the future of the youth development and nation building should remain above politics and electoral considerations.
2: ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಆಂಧ್ರ ಜನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಎನ್ಆರ್ಐಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಆಂಧ್ರದವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇವೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಯುಕೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡ್ಬೋದು ಅಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಡಿನೈ ಮಾಡೋದು ಇದು ಅನ್ಯಾಯ
3: ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ದಟ್ ದ ವಿಸಿಟ್ ಆಫ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಂಡೀಡ್ of other dignitaries are assessed by the Ministry of External Affairs in order to accord political clearance. The program proposed in such cases should be appropriate to the office held and the purpose of the visit. In this particular case, that was not so in respect of the United States, and therefore the clearance was denied, not given. Incidentally, let me also tell you that clearance was given for his visit to the United Kingdom.
4: देखिए भाई चीफ मिनिस्टर को क्लियरेंस लेकर फ्लाइट चढ़ के बाद में जाना है ये पहले ही भाग गए नंबर वन नंबर टू इनके टूर प्रोग्राम में उनके सीएम ऑफिस के हिसाब से ये जो भी इंस्टीट्यूशंस को मिल रहे थे ब्लेवेंटिक करके एक स्कूल है ऑक्सफोर्ड में वो देश में एंटी सीएए राइट्स को फंडिंग किया सो इंस्टीट्यूशन है अब्रगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का उसके अगेंस्ट में फंडिंग किए सो है देश में खेओस और यहाँ पर जो पीस को डिस्टर्ब करने का जो भी कार्यक्रम होगा ये सब के लिए वो फंडिंग करते हैं मोदी जी के खिलाफ प्रोपागंडा करने में फंडिंग करते हैं बेसिकली ये एंटी इंडिया एंटी नेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनके मीटिंग शेड्यूल हुए थे वो क्यों हुए किस कारण हुए ये चीफ मिनिस्टर को बताना चाहिए
5: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजेक्टिंग परमिशन टू चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी फॉर हिज फॉरेन विजिट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टर्मिंग इट एज इनअप्रोप्रिएट रेज सीरियस क्वेश्चंस हियर इन पीपल ऑफ तेलंगाना व्हाट कुड बी सो इनअप्रोप्रिएट फॉर द चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डीज विजिट टू द यूएसए Last time when Chief Minister Revanth Reddy visited United States of America, he signed a 1,000 crore MOU with his own brother, Anumula Jagdishwar Reddy's shell company Swachh Bio for 1,000 crores. This was raised with the ED that how can a Chief Minister travel to United States of America and sign a MOU in his official visit with his own brother's company? Is it

0: not misuse of office? Is it not corruption?
1: A heartbreaking tragedy in Maharashtra where a family of three died trying to save their 18-year-old son, the teen threatening to take his own life. He stood on the edge of a hill for nearly 3 hours. His parents, villagers, police personnel, everyone repeatedly tried to persuade him to step away from the edge of the cliff. But as the teenager moved closer, his father climbed up and tried to pull him back. The two lost their balance, fell from the hill. Moments later, a panic-stricken mother also fell. As per the reports, an iPhone EMI became the trigger for the tragedy. The teenager was struggling to arrange money for the monthly installment, leading to an argument with his father. All three unfortunately died in the tragic incident at the Khavra Hill in Chhatrapati Sambhaji Nagar. Their pet at home is still awaiting their return.
2: वही पहाड़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये वही पहाड़ है जिससे इस कुणाल चांदगुड़े नाम के लड़के ने अपनी जान देने के लिए यहाँ पहुँचा था। इस सब कहानी की शुरुआत होती है एक आईफोन से लेकर। कुणाल ने कुछ दिन पहले एक आईफोन लिया था और वो आईफोन यूज़ करते वक्त उसकी जो किस्ती थी वो भरने की उसकी परेशानी हो रही थी। इसी को लेकर उसके पिताजी से उसकी बहस हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि कल सुबह 10:30 बजे कुणाल अपने घर से अपनी जान देने के लिए इसी छत्रपति संभाजी नगर के वालूज परिसर के एक खौड़ा जो पहाड़ है वहाँ पे पहुँचा। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हुए और कुणाल की माँ जो संगीता है वो भी यहाँ पे पहुँची। करीब 10:30 से 11 बजे तक यहाँ पे कुछ लोग ज़्यादा इकट्ठा हो गए और उसके बाद दोपहर के 12:30 से 1 बजे तक यानी 3 घंटे के करीब कुणाल को समझाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कुणाल इसी पहाड़ के वो जो लास्ट मूवमेंट पे लास्ट जो आखिरी कोना है वहाँ पर खड़ा था और अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच उसको कई बार उसकी माँ ने रोते हुए समझाया कि ये कोशिश मत कर, हम जो भी है प्रॉब्लम बैठ कर सॉल्व करेंगे। लेकिन कुणाल अपनी जान देने की जो उसने ठान ली थी उस पर अड़ा था। और इसी बीच कुछ देर बाद वहाँ पे उसके पिता पहुँचते हैं और वो आगे बढ़कर कुणाल को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी बीच कुणाल को बचाने की कोशिश में दोनों के ही पैर फिसल जाते हैं और इसी पहाड़ से करीब 240 से 50 फीट ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं और दोनों की जगहों पे ही मौत हो जाती है। इस घटना के बाद कुछ ही देर बाद मतलब 4 से 5 सेकंड बाद उसकी माँ जो जिसका नाम संगीता है वो भी पहाड़ से कूद जाती है और तीनों की जगहों पे मौत हो जाती है।
3: पिताजी वो बेटे को बचाने को गए लेकिन वो भी उनके साथ में नीचे गिर गए। वैसे ये इसके माँ को लग गया है कि बेटा और पिताजी गुजर गए हैं, तो इसलिए उसने ही तुरंत उड़ी मार के आत्महत्या कर दी। इसमें कोशिश में पुलिस ने बहुत प्रयास किए उसका मन परिवर्तन करने के, बचाने के। उसके बाद में फायर ब्रिगेड को बुलाया, फायर ब्रिगेड ने नीचे जाली लगाई और लेकिन जब जाली नीचे से लगाई तो ये जो आत्महत्या करने वाली व्यक्ति बार बार उसका पॉइंट चेंज कर रही थी, इसीलिए वो जाली बार बार साइड को लेना पड़ी और उसने वो मौका देख के वो आत्महत्या कर ली।
1: Well, that story and much more lined up on the other side for a very quick break. Stay tuned, stay with us.
4: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't.

0: वेज एंड मींस है, ये सब छोड़ के धरना पर बैठना, अटेंशन ड्रॉ करना, और अभी भी मैं एक्टिव हूँ ये दिखाने के लिए। शायद वो अभी शायद फॉरेन जाते होंगे, क्योंकि सेशन खत्म हुआ है, वो फॉरेन जाने से पहले थोड़ा ड्रामाबाजी करके जो 15-20 दिन, कभी वो 20-30 दिन जाते हैं ना फॉरेन, किसी को भी नहीं बताते हैं, उसका एब्सेंसी तुरंत फील नहीं, उन्होंने एजिटेशन किया था, कहते यही मन में लोग रखते हैं, ऐसे भ्रम में, ये अपने ही भ्रमालोक में रहते हुए ये सब करते हैं।
1: Telangana Chief Minister Revanth Reddy's proposed US visit has triggered a political row after Ministry of External Affairs denied clearance for the program. The MEA said that the visits by chief ministers require political clearance and the proposed US program was not considered appropriate for the office held and the purpose of the visit. The ministry, however, clarified that Reddy's UK visit has been cleared. The BJP has questioned why chief minister's proposed meetings included institution it alleges to have links, activities opposing India's interests, and also his meet with the Oxford professor Maya Tudor. Revanth Reddy meanwhile hit back at the political criticism, saying that the future of the youth development and nation building should remain above politics and electoral considerations.
2: Mattu Telangana Andhra jana visheshavagi America dalli bahalashtu NRIs idare. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಆಂಧ್ರದವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇವೆ, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ, ಯು ಕೆಗೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡ್ಬೋದು ಅಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಡಿನೈ ಮಾಡೋದು ಇದು ಅನ್ಯಾಯ.
3: ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ದಟ್ ದ ವಿಸಿಟ್ ಆಫ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಂಡೀಡ್ of other dignitaries are assessed by the Ministry of External Affairs in order to accord political clearance. The program proposed in such cases should be appropriate to the office held and the purpose of the visit. In this particular case, that was not so in respect of the United States, and therefore the clearance was denied, not given. Incidentally, let me also tell you that clearance was given for his visit to the United Kingdom.
4: देखिए भाई, चीफ मिनिस्टर को क्लियरेंस लेकर फ्लाइट चढ़ के बाद में जाना है, ये पहले ही भाग गए, नंबर वन. नंबर टू, इनके टूर प्रोग्राम में उनके सीएम ऑफिस के हिसाब से ये जो भी इंस्टीट्यूशंस को मिल रहे थे, ब्लेवेंटिक करके एक स्कूल है ऑक्सफोर्ड में, वो देश में एंटी सीएए राइट्स को फंडिंग किया सो इंस्टीट्यूशन है. अब्रगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का, उसके अगेंस्ट में फंडिंग किए सो है. देश में खेओस और यहाँ पर जो पीस को डिस्टर्ब करने का जो भी कार्यक्रम होगा, ये सब के लिए वो फंडिंग करते हैं. मोदी जी के खिलाफ प्रोपागंडा करने में फंडिंग करते हैं. बेसिकली ये एंटी इंडिया, एंटी नेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनके मीटिंग शेड्यूल हुए थे, वो क्यों हुए, किस कारण हुए, ये चीफ मिनिस्टर को बताना चाहिए.
5: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजेक्टिंग परमिशन टू चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी फॉर हिज फॉरेन विजिट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टर्मिंग इट एज इनअप्रोप्रिएट रेज सीरियस क्वेश्चंस हियर इन पीपल ऑफ तेलंगाना. व्हाट कुड बी सो इनअप्रोप्रिएट फॉर द चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डीज विजिट टू द यूएसए? Last time when Chief Minister Revanth Reddy visited United States of America, he signed a 1,000 crore MOU with his own brother Anumula Jagdishwar Reddy's shell company Swachh Bio for 1,000 crores. This was raised with the ED that how can a chief minister travel to United States of America and sign a MOU in his official visit with his own brother's company? Is it not misuse of office? Is it not corruption?
1: A heartbreaking tragedy.

0: Maharashtra, where a family of three died trying to save their 18-year-old son, the teen threatening to take his own life. He stood on the edge of a hill for nearly 3 hours. His parents, villagers, police personnel, everyone repeatedly tried to persuade him to step away from the edge of the cliff. But as the teenager moved closer, his father climbed up and tried to pull him back. The two lost their balance, fell from the hill. Moments later, a panic-stricken mother also fell. As per the reports, an iPhone EMI became the trigger for the tragedy. The teenager was struggling to arrange money for the monthly installment, leading to an argument with his father. All three unfortunately died in the tragic incident at the Khavda Hill in Chhatrapati Sambhaji Nagar. Their pet at home is still awaiting their return.
1: वही पार है, मैं आपको बता देता हूं कि ये वही पार है जिससे इस कुणाल चांदगुड़े नाम के लड़के ने अपनी जान देने के लिए यहाँ पहुँचा था। इस सब कहानी की शुरुआत होती है एक आईफोन से लेकर। कुणाल ने कुछ दिन पहले एक आईफोन लिया था और वो आईफोन यूज़ करते वक्त उसकी जो किस्ती थी वो भरने की उसकी परेशानी हो रही थी। इसी को लेकर उसके पिताजी से उसकी बहस हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि कल सुबह 10:30 बजे कुणाल अपने घर से अपनी जान देने के लिए इसी छत्रपति संभाजी नगर के वालूज परिसर के एक खौड़ा जो पहाड़ है वहाँ पे पहुँचा। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हुए और कुणाल की माँ जो संगीता है वो भी यहाँ पे पहुँची। करीब 10:30 से 11 बजे तक यहाँ पे कुछ लोग ज़्यादा इकट्ठा हो गए और उसके बाद दोपहर के 12:30 से 1 बजे तक, यानी 3 घंटे के करीब कुणाल को समझाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कुणाल इसी पहाड़ के वो जो लास्ट मूवमेंट पे, लास्ट जो आखिरी कोना है वहाँ पर खड़ा था और अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच उसको कई बार उसकी माँ ने रोते हुए समझाया कि ये कोशिश मत कर, हम जो भी है प्रॉब्लम बैठ कर सॉल्व करेंगे। लेकिन कुणाल अपनी जान देने की जो उसने ठान ली थी उस पर अड़ा था। और इसी बीच कुछ देर बाद वहाँ पे उसके पिता पहुँचते हैं और वो आगे बढ़कर कुणाल को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी बीच कुणाल को बचाने की कोशिश में दोनों के ही पैर फिसल जाते हैं और इसी पहाड़ से करीब 240 से 50 फीट ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं और दोनों की जगहों पे ही मौत हो जाती है। इस घटना के बाद कुछ ही देर बाद, मतलब 4 से 5 सेकंड बाद, उसकी माँ जो जिसका नाम संगीता है वो भी पहाड़ से कूद जाती है और तीनों की जगहों पे मौत हो जाती है।
2: पिताजी वो बेटे को बचाने को गए लेकिन वो भी उनके साथ में नीचे गिर गए। वैसे ये इसके माँ को लग गया है कि बेटा और पिताजी गुजर गए हैं, तो इसलिए उसने ही तुरंत उड़ी मार के आत्महत्या कर दी। इसमें कोशिश में पुलिस ने बहुत प्रयास किए उसका मन परिवर्तन करने के, बचाने के। उसके बाद में फायर ब्रिगेड को बुलाया, फायर ब्रिगेड ने नीचे जाली लगाई और लेकिन जब जाली नीचे से लगाई तो ये जो आत्महत्या करने वाली व्यक्ति बार बार उसका पॉइंट चेंज कर रही थी, इसीलिए वो जाली बार बार साइड को लेना पड़ी और उसने वो मौका देख के वो आत्महत्या कर ली।
0: Well, that story and much more lined up on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose.
0: Welcome back. The US-Canada trade deal has collapsed at the final hour.

0: धर्म को लेकर जिस प्रकार की कुलच्छित राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है उसको लेकर हम आंदोलन खड़ा करेंगे। जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने वंदे मातरम को एक एंटी इंपेरियलिस्टिक क्राई कहा था, उस विषय को हम जनता के सामने रखेंगे।
1: ये वंदे मातरम को बहुत बैकलैश हुआ है, वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे। ये जब उन लोगों ने ऐलान किया, रेजोल्यूशन पास किया, तब बहुत बड़ा बैकलैश हुआ है, जनता के मन में आक्रोश पैदा हुआ है। तो ये आक्रोश डाइवर्ट करने के लिए, इशू डाइवर्ट करने के लिए पूरा ड्रामाबाजी है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। और एक अपोजिशन लीडर पुलिस स्टेशन में जाके अगर नहीं करते तो बहुत अलग अलग रास्ता है, अलग अलग इसके लिए वेज एंड मीन्स है। ये सब छोड़ के धरना पर बैठना, अटेंशन ड्रॉ करना, और अभी भी मैं एक्टिव हूँ ये दिखाने के लिए, शायद वो अभी शायद फॉरेन जाते होंगे क्योंकि सेशन खत्म हुआ है, वो फॉरेन जाने से पहले थोड़ा ड्रामाबाजी करके जो 15-20 दिन, कभी वो 20-30 दिन जाते हैं ना फॉरेन, किसी को भी नहीं बताते हैं, उसका एब्सेंस ही तुरंत फील नहीं, उन्होंने एजिटेशन किया था, कहते यही मन में लोग रखते हैं, ऐसे भ्रम में ये अपने ही भ्रमालोक में रहते हुए ये सब करते हैं।
2: Telangana Chief Minister Revanth Reddy's proposed US visit has triggered a political row after Ministry of External Affairs denied clearance for the program. The MEA said that the visits by chief ministers require political clearance and the proposed US program was not considered appropriate for the office held and the purpose of the visit. The ministry, however, clarified that Reddy's UK visit has been cleared. The BJP has questioned why chief minister's proposed meetings included institution it alleges to have links, activities opposing India's interests, and also his meet with the Oxford professor Maya Tudor. Revanth Reddy meanwhile hit back at the political criticism, saying that the future of the youth development and nation building should remain above politics and electoral considerations.
3: Mattu Telangana Andhra Jana visheshavagi America dalli bahalashtu NRIs idare. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಆಂಧ್ರದವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇವೆ, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ, ಯು ಕೆಗೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡ್ಬೋದು ಅಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಡಿನೈ ಮಾಡೋದು ಇದು ಅನ್ಯಾಯ.
4: Let me say that the visit of chief ministers, as indeed of other dignitaries, are assessed by the Ministry of External Affairs in order to accord political clearance. The program proposed in such cases should be appropriate to the office held and the purpose of the visit. In this particular case, that was not so in respect of the United States, and therefore the clearance was denied, not given. Incidentally, let me also tell you that clearance was given for his visit to the United Kingdom.
5: देखिए भाई, चीफ मिनिस्टर को क्लियरेंस लेकर फ्लाइट चढ़ के बाद में जाना है, ये पहले ही भाग गए, नंबर वन. नंबर टू, इनके टूर प्रोग्राम में उनके सीएम ऑफिस के हिसाब से ये जो भी इंस्टीट्यूशंस को मिल रहे थे, ब्लेवेंटिक करके एक स्कूल है ऑक्सफोर्ड में, वो देश में एंटी सीएए राइट्स को फंडिंग किए सो इंस्टीट्यूशन है. अब्रगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का, उसके अगेंस्ट में फंडिंग की ऐसो है. देश में खेओस और यहाँ पर जो पीस को डिस्टर्ब करने का जो भी कार्यक्रम होगा, ये सब के लिए वो फंडिंग करते हैं. मोदी जी के खिलाफ प्रोपागंडा करने में फंडिंग करते हैं. बेसिकली ये एंटी इंडिया, एंटी नेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनके मीटिंग शेड्यूल हुए थे, वो क्यों हुए, किस कारण हुए, ये चीफ मिनिस्टर को बताना चाहिए.
6: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया

0: अनगुड़े नाम के लड़के ने अपनी जान देने के लिए यहाँ पहुँचा था। इस सब कहानी की शुरुआत होती है एक आईफोन से लेकर। कुणाल ने कुछ दिन पहले एक आईफोन लिया था और वो आईफोन यूज़ करते वक्त उसकी जो किस्ती थी वो भरने की उसकी परेशानी हो रही थी। इसी को लेकर उसके पिताजी से उसकी बहस हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि कल सुबह 10:30 बजे कुणाल अपने घर से अपनी जान देने के लिए इसी छत्रपति संभाजी नगर के वालूज परिसर के एक खौड़ा जो पहाड़ है वहाँ पे पहुँचा। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हुए और कुणाल की माँ जो संगीता है वो भी यहाँ पे पहुँची। करीब 10:30 से 11 बजे तक यहाँ पे कुछ लोग ज़्यादा इकट्ठा हो गए और उसके बाद दोपहर के 12:30 से 1 बजे तक यानी 3 घंटे के करीब कुणाल को समझाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कुणाल इसी पहाड़ के वो जो लास्ट मूवमेंट पे लास्ट जो आखिरी कोना है वहाँ पर खड़ा था और अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच उसको कई बार उसकी माँ ने रोते हुए समझाया कि ये कोशिश मत कर, हम जो भी है प्रॉब्लम बैठ कर सॉल्व करेंगे। लेकिन कुणाल अपनी जान देने की जो उसने ठान ली थी उस पर अड़ा था। और इसी बीच कुछ देर बाद वहाँ पे उसके पिता पहुँचते हैं और वो आगे बढ़कर कुणाल को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी बीच कुणाल को बचाने की कोशिश में दोनों के ही पैर फिसल जाते हैं और इसी पहाड़ से करीब 240 से 50 फीट ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं और दोनों की जगहों पे ही मौत हो जाती है। इस घटना के बाद कुछ ही देर बाद मतलब 4 से 5 सेकंड बाद उसकी माँ जो जिसका नाम संगीता है वो भी पहाड़ से कूद जाती है और तीनों की जगहों पे मौत हो जाती है।
1: पिताजी वो बेटे को बचाने को गए लेकिन वो भी उनके साथ में नीचे गिर गए। वैसे ये इसके माँ को लग गया है कि बेटा और पिताजी गुजर गए हैं, तो इसलिए उसने ही तुरंत उड़ी मार के आत्महत्या कर दी। इसमें कोशिश में पुलिस ने बहुत प्रयास किए उसका मन परिवर्तन करने के, बचाने के। उसके बाद में फायर ब्रिगेड को बुलाया, फायर ब्रिगेड ने नीचे जाली लगाई और लेकिन जब जाली नीचे से लगाई तो ये जो आत्महत्या करने वाली व्यक्ति बार बार उसका पॉइंट चेंज कर रही थी, इसीलिए वो जाली बार बार साइड को लेना पड़ी और उसने वो मौका देख के वो आत्महत्या कर ली।
2: Well, that story and much more lined up on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored.
2: Welcome back. The US-Canada trade deal has collapsed at the final hour, with 50% US tariffs taking effect on certain Canadian goods. Canada is vowing to hit back with matching tariffs, putting auto, steel, aluminium supply chains in the crosshairs. Nearly $900 billion in annual trade at stake. This could have consequences for businesses, jobs, consumers on both sides of the border. Here's a special report.
4: Washington and Ottawa have failed to reach an agreement to avert new U.S. tariffs on Canadian goods. The duties set at 50% were originally due to kick in on Wednesday, but delayed them by 3 days, giving negotiators more time to reach a breakthrough. But that deadline has now passed. U.S. Trade Representative James Greer says Washington had offered tariff reductions in key sectors, including steel and aluminium. but Canada rejected the final terms. Carney says last-minute changes from Washington made the proposed deal unfair and economically unacceptable.

0: जनता के मन में आक्रोश पैदा हुआ है। तो ये आक्रोश डाइवर्ट करने के लिए, इशू डाइवर्ट करने के लिए पूरा ड्रामाबाजी है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। और एक अपोजिशन लीडर पुलिस स्टेशन में जाके अगर नहीं करते हैं तो बहुत अलग अलग रास्ता है, अलग अलग इसके लिए वेज एंड मीन्स है। ये सब छोड़ के धरना पर बैठना, अटेंशन ड्रॉ करना, और अभी भी मैं एक्टिव हूँ ये दिखाने के लिए। शायद वो अभी शायद फॉरेन जाते होंगे, क्योंकि सेशन खत्म हुआ है, वो फॉरेन जाने से पहले थोड़ा ड्रामाबाजी करके जो 15-20 दिन, कभी वो 20-30 दिन जाते हैं ना फॉरेन, किसी को भी नहीं बताते हैं, उसका एब्सेंसी तुरंत फील नहीं, उन्होंने एजिटेशन किया था, कहते यही मन में लोग रखते हैं, ऐसे भ्रम में या अपने ही भ्रमालोक में रहते हुए ये सब करते हैं।
1: Telangana Chief Minister Revanth Reddy's proposed US visit has triggered a political row after Ministry of External Affairs denied clearance for the program. The MEA said that the visits by chief ministers require political clearance and the proposed US program was not considered appropriate for the office held and the purpose of the visit. The ministry, however, clarified that Reddy's UK visit has been cleared. The BJP has questioned why chief ministers' proposed meetings included institution it alleges to have links, activities opposing India's interests, and also his meet with the Oxford professor Maya Tudor. Revanth Reddy meanwhile hit back at the political criticism, saying that the future of the youth development and nation building should remain above politics and electoral considerations.
2: Mattu Telangana Andhra jana visheshavagi America dalli bahalashtu NRIs iddaru. ಅವರು ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಆಂಧ್ರದವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇವೆ, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ, ಯು ಕೆಗೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡ್ಬೋದು ಅಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಡಿನೈ ಮಾಡೋದು ಇದು ಅನ್ಯಾಯ.
3: Let me say that the visit of chief ministers, as indeed of other dignitaries, are assessed by the Ministry of External Affairs in order to accord political clearance. The program proposed in such cases should be appropriate to the office held and the purpose of the visit. In this particular case, that was not so in respect of the United States, and therefore the clearance was denied, not given. Incidentally, let me also tell you that clearance was given for his visit to the United Kingdom.
4: देखिए भाई, चीफ मिनिस्टर को क्लियरेंस लेकर फ्लाइट चढ़ के बाद में जाना है, ये पहले ही भाग गए, नंबर वन. नंबर टू, इनके टूर प्रोग्राम में उनके सीएम ऑफिस के हिसाब से ये जो भी इंस्टीट्यूशंस को मिल रहे थे, ब्लेवन टिक करके एक स्कूल है ऑक्सफोर्ड में, वो देश में एंटी सीएए राइट्स को फंडिंग किया सो इंस्टीट्यूशन है. अब्रगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का, उसके अगेंस्ट में फंडिंग की ऐसो है. देश में खेओस और यहाँ पर जो पीस को डिस्टर्ब करने का जो भी कार्यक्रम होगा, ये सब के लिए वो फंडिंग करते हैं. मोदी जी के खिलाफ प्रोपागंडा करने में फंडिंग करते हैं. बेसिकली ये एंटी इंडिया, एंटी नेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनके मीटिंग शेड्यूल हुए थे, वो क्यों हुए, किस कारण हुए, ये चीफ मिनिस्टर को बताना चाहिए.
5: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजेक्टिंग परमिशन टू चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी फॉर हिज फॉरेन विजिट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टर्मिंग इट एज इनअप्रोप्रिएट रेज सीरियस क्वेश्चंस हियर इन पीपल ऑफ तेलंगाना. व्हाट कुड बी सो इनअप्रोप्रिएट फॉर द चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डीज विजिट टू द यूएसए? Last time when Chief Minister Revanth Reddy visited United States of America, he signed a 1,000 crore MOU with his own brother Anumula Jagdishwar Reddy's shell company Swachh Bio for 1000

0: 1,000 crores. This was raised with the ED that how can a chief minister travel to United States of America and sign a MOU in his official visit with his own brother's company? Is it not misuse of office? Is it not corruption?
1: A heartbreaking tragedy in Maharashtra where a family of three died trying to save their 18-year-old son, the teen threatening to take his own life. He stood on the edge of a hill for nearly 3 hours. His parents, villagers, police personnel, everyone repeatedly tried to persuade him to step away from the edge of the cliff. But as the teenager moved closer, his father climbed up and tried to pull him back. The two lost their balance, fell from the hill. Moments later, a panic-stricken mother also fell. As per the reports, an iPhone EMI became the trigger for the tragedy. The teenager was struggling to arrange money for the monthly installment, leading to an argument with his father. All three unfortunately died in the tragic incident at the Khavra Hill in Chhatrapati Sambhaji Nagar. Their pet at home is still awaiting their return.
2: वही पहाड़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये वही पहाड़ है जिससे इस कुणाल चांदगुड़े नाम के लड़के ने अपनी जान देने के लिए यहाँ पहुँचा था। इस सब कहानी की शुरुआत होती है एक आईफोन से लेकर। कुणाल ने कुछ दिन पहले एक आईफोन लिया था और वो आईफोन यूज़ करते वक्त उसकी जो किश्ती थी वो भरने की उसकी परेशानी हो रही थी। इसी को लेकर उसके पिताजी से उसकी बहस हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि कल सुबह 10:30 बजे कुणाल अपने घर से अपनी जान देने के लिए इसी छत्रपति संभाजी नगर के वालूज परिसर के एक खौड़ा जो पहाड़ है वहाँ पे पहुँचा। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हुए और कुणाल की माँ जो संगीता है वो भी यहाँ पे पहुँची। करीब 10:30 से 11 बजे तक यहाँ पे कुछ लोग ज़्यादा इकट्ठा हो गए और उसके बाद दोपहर के 12:30 से 1 बजे तक यानी 3 घंटे के करीब कुणाल को समझाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कुणाल इसी पहाड़ के वो जो लास्ट मूवमेंट पे लास्ट जो आखिरी कोना है वहाँ पर खड़ा था और अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच उसको कई बार उसकी माँ ने रोते हुए समझाया कि ये कोशिश मत कर, हम जो भी है प्रॉब्लम बैठ कर सॉल्व करेंगे। लेकिन कुणाल अपनी जान देने की जो उसने ठान ली थी उस पर अड़ा था। और इसी बीच कुछ देर बाद वहाँ पे उसके पिता पहुँचते हैं और वो आगे बढ़कर कुणाल को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी बीच कुणाल को बचाने की कोशिश में दोनों के ही पैर फिसल जाते हैं और इसी पहाड़ से करीब 240 से 50 फीट ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं और दोनों की जगहों पे ही मौत हो जाती है। इस घटना के बाद कुछ ही देर बाद मतलब 4 से 5 सेकंड बाद उसकी माँ जो जिसका नाम संगीता है वो भी पहाड़ से कूद जाती है और तीनों की जगहों पे मौत हो जाती है।
3: पिताजी वो बेटे को बचाने को गए लेकिन वो भी उनके साथ में नीचे गिर गए। वैसे ये इन इसके माँ को लग गया है कि बेटा और पिताजी गुजर गए हैं, तो इसलिए उसने ही तुरंत उड़ी मार के आत्महत्या कर दी। इसमें कोशिश में पुलिस ने बहुत प्रयास किए उसका मन परिवर्तन करने के, बचाने के। उसके बाद में फायर ब्रिगेड को बुलाया, फायर ब्रिगेड ने नीचे जाली लगाई और लेकिन जब जाली नीचे से लगाई तो ये जो आत्महत्या करने वाली व्यक्ति बार बार उसका पॉइंट चेंज कर रही थी, इसीलिए वो जाली बार बार साइड को लेना पड़ी और उसने वो मौका देख के वो आत्महत्या कर ली।
1: Well, that story and much more lined up on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.
4: Launch control, 0 to 100.
5: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
6: This car makes no sense, yet it makes every sense.
7: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
5: Your friend said, yeah, Lily. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
4: Control 0 to 100.
5: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
6: This car makes no sense, yet it makes every sense.
7: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
5: Your friend said, yeah, Lily. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your

0: This was raised with the ED that how can a chief minister travel to United States of America and sign a MOU in his official visit with his own brother's company? Is it not misuse of office? Is it not corruption?
1: A heartbreaking tragedy in Maharashtra where a family of three died trying to save their 18-year-old son, the teen threatening to take his own life. He stood on the edge of a hill for nearly 3 hours. His parents, villagers, police personnel, everyone repeatedly tried to persuade him to step away from the edge of the cliff. But as the teenager moved closer, his father climbed up and tried to pull him back. The two lost their balance, fell from the hill. Moments later, a panic-stricken mother also fell. As per the reports, an iPhone EMI became the trigger for the tragedy. The teenager was struggling to arrange money for the monthly installment, leading to an argument with his father. All three unfortunately died in the tragic incident at the Khavra Hill in Chhatrapati Sambhajinagar. Their pet at home is still awaiting their return.
2: वही पहाड़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये वही पहाड़ है जिससे इस कुणाल चांदगुड़े नाम के लड़के ने अपनी जान देने के लिए यहाँ पहुँचा था। इस सब कहानी की शुरुआत होती है एक आईफोन से लेकर। कुणाल ने कुछ दिन पहले एक आईफोन लिया था और वो आईफोन यूज़ करते वक्त उसकी जो किश्ती थी वो भरने की उसकी परेशानी हो रही थी। इसी को लेकर उसके पिताजी से उसकी बहस हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि कल सुबह 10:30 बजे कुणाल अपने घर से अपनी जान देने के लिए इसी छत्रपति संभाजी नगर के वालूज परिसर के एक खौड़ा जो पहाड़ है वहाँ पे पहुँचा। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हुए और कुणाल की माँ जो संगीता है वो भी यहाँ पे पहुँची। करीब 10:30 से 11 बजे तक यहाँ पे कुछ लोग ज़्यादा इकट्ठा हो गए और उसके बाद दोपहर के 12:30 से 1 बजे तक यानी 3 घंटे के करीब कुणाल को समझाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कुणाल इसी पहाड़ के वो जो लास्ट मूवमेंट पे लास्ट जो आखिरी कोना है वहाँ पर खड़ा था और अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच उसको कई बार उसकी माँ ने रोते हुए समझाया कि ये कोशिश मत कर, हम जो भी है प्रॉब्लम बैठ कर सॉल्व करेंगे। लेकिन कुणाल अपनी जान देने की जो उसने ठान ली थी उस पर अड़ा था। और इसी बीच कुछ देर बाद वहाँ पे उसके पिता पहुँचते हैं और वो आगे बढ़कर कुणाल को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी बीच कुणाल को बचाने की कोशिश में दोनों के ही पैर फिसल जाते हैं और इसी पहाड़ से करीब 240 से 50 फीट ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं और दोनों की जगहों पे ही मौत हो जाती है। इस घटना के बाद कुछ ही देर बाद मतलब 4 से 5 सेकंड बाद उसकी माँ जो जिसका नाम संगीता है वो भी पहाड़ से कूद जाती है और तीनों की जगहों पे मौत हो जाती है।
3: पिताजी वो बेटे को बचाने को गए लेकिन वो भी उनके साथ में नीचे गिर गए। वैसे ये इसके माँ को लग गया है कि बेटा और पिताजी गुजर गए हैं, तो इसलिए उसने ही तुरंत उड़ी मार के आत्महत्या कर दी। इसमें कोशिश में पुलिस ने बहुत प्रयास किए उसका मन परिवर्तन करने के, बचाने के। उसके बाद में फायर ब्रिगेड को बुलाया, फायर ब्रिगेड ने नीचे जाली लगाई और लेकिन जब जाली नीचे से लगाई तो ये जो आत्महत्या करने वाली व्यक्ति बार बार उसका पॉइंट चेंज कर रही थी, इसीलिए वो जाली बार बार साइड को लेना पड़ी और उसने वो मौका देख के वो आत्महत्या कर ली।
1: Well, that story and much more lined up on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.
4: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: अभी शायद फॉरेन जाते होंगे क्योंकि सेशन खत्म हुआ है। वो फॉरेन जाने से पहले थोड़ा ड्रामाबाजी करके जो 15-20 दिन, कभी वो 20 दिन 30 दिन जाते हैं ना फॉरेन, किसी को भी नहीं बताते हैं, उसका एब्सेंसी तुरंत फील नहीं होना, वो एजिटेशन किया था कहते, यही मन में लोग रखते हैं, ऐसे भ्रम में ये अपने ही भ्रमालोक में रहते हुए ये सब करते हैं।
1: Telangana Chief Minister Revanth Reddy's proposed US visit has triggered a political row after Ministry of External Affairs denied clearance for the program. The MEA said that the visits by chief ministers require political clearance and the proposed US program was not considered appropriate for the office held and the purpose of the visit. The ministry, however, clarified that Reddy's UK visit has been cleared. The BJP has questioned why chief ministers' proposed meetings included institution it alleges to have links, activities opposing India's interests, and also his meet with the Oxford professor Maya Tudor. Revanth Reddy, meanwhile, hit back at the political criticism, saying that the future of the youth development and nation building should remain above politics and electoral considerations.
2: Mattu Telangana Andhra Jana Visheshwagi America Dali Balastu Yanarajida. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಆಂಧ್ರದವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇವೆ, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ, ಯುಕೆಗೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡ್ಬೋದು ಅಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಡಿನೈ ಮಾಡೋದು ಇದು ಅನ್ಯಾಯ.
3: ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ದಟ್ ದ ವಿಸಿಟ್ ಆಫ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಂಡೀಡ್ of other dignitaries are assessed by the Ministry of External Affairs in order to accord political clearance. The program proposed in such cases should be appropriate to the office held and the purpose of the visit. In this particular case, that was not so in respect of the United States, and therefore the clearance was denied, not given. Incidentally, let me also tell you that clearance was given for his visit to the United Kingdom.
4: देखिए भाई, चीफ मिनिस्टर को क्लियरेंस लेकर फ्लाइट चढ़ के बाद में जाना है, ये पहले ही भाग गए. नंबर वन. नंबर टू, इनके टूर प्रोग्राम में उनके सीएम ऑफिस के हिसाब से ये जो भी इंस्टीट्यूशंस को मिल रहे थे, ब्लेवन टिक करके एक स्कूल है ऑक्सफोर्ड में, वो देश में एंटी सीएए राइट्स को फंडिंग किया सो इंस्टीट्यूशन है. अब्रगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का, उसके अगेंस्ट में फंडिंग किए सो है. देश में खेओस और यहाँ पर जो पीस को डिस्टर्ब करने का जो भी कार्यक्रम होगा, ये सब के लिए वो फंडिंग करते हैं. मोदी जी के खिलाफ प्रोपागंडा करने में फंडिंग करते हैं. बेसिकली ये एंटी इंडिया, एंटी नेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनके मीटिंग शेड्यूल हुए थे, वो क्यों हुए, किस कारण हुए, ये चीफ मिनिस्टर को बताना चाहिए.
5: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजेक्टिंग परमिशन टू चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी फॉर हिज फॉरेन विजिट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टर्मिंग इट एज इनअप्रोप्रिएट रेज सीरियस क्वेश्चंस हियर इन पीपल ऑफ तेलंगाना. व्हाट कुड बी सो इनअप्रोप्रिएट फॉर द चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डीज विजिट टू द यूएसए? Last time when Chief Minister Revanth Reddy visited United States of America, he signed a 1,000 crore MOU with his own brother Anumula Jagdishwar Reddy's shell company Swachh Bio for 1,000 crores. This was raised with the ED that how can a chief minister travel to United States of America and sign a MOU in his official visit with his own brother's company? Is it not misuse of office? Is it not corruption?
1: A heartbreaking tragedy in Maharashtra where a family of three died trying to save their 18-year-old son, the teen threatening to take his own life. He stood on the edge of a hill for nearly 3 hours. His parents, village

0: Personal. Everyone repeatedly tried to persuade him to step away from the edge of the cliff. But as the teenager moved closer, his father climbed up and tried to pull him back. The two lost their balance, fell from the hill. Moments later, a panic-stricken mother also fell. As per the reports, an iPhone EMI became the trigger for the tragedy. The teenager was struggling to arrange money for the monthly installment, leading to an argument with his father. All three unfortunately died in the tragic incident at the Khavda Hill in Chhatrapati Sambhajinagar. Their pet at home is still awaiting their return.
1: ये वही पहाड़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये वही पहाड़ है जिससे इस कुणाल चांदगुड़े नाम के लड़के ने अपनी जान देने के लिए यहाँ पहुँचा था। इस सब कहानी की शुरुआत होती है एक आईफोन से लेकर। कुणाल ने कुछ दिन पहले एक आईफोन लिया था और वो आईफोन यूज़ करते वक्त उसकी जो किश्ती थी वो भरने की उसकी परेशानी हो रही थी। इसी को लेकर उसके पिताजी से उसकी बहस हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि कल सुबह 10:30 बजे कुणाल अपने घर से अपनी जान देने के लिए इसी छत्रपति संभाजीनगर के वालूज परिसर के एक खौड़ा जो पहाड़ है वहाँ पर पहुँचा। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हुए और कुणाल की माँ जो संगीता है वो भी यहाँ पर पहुँची। करीब 10:30 से 11 बजे तक यहाँ पे कुछ लोग ज़्यादा इकट्ठा हो गए और उसके बाद दोपहर के 12:30 से 1 बजे तक, यानी 3 घंटे के करीब कुणाल को समझाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कुणाल इसी पहाड़ के वो जो लास्ट मूवमेंट पे, लास्ट जो आखिरी कोना है वहाँ पर खड़ा था और अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच उसको कई बार उसकी माँ ने रोते हुए समझाया कि ये कोशिश मत कर, हम जो भी है प्रॉब्लम बैठ कर सॉल्व करेंगे। लेकिन कुणाल अपनी जान देने की जो उसने ठान ली थी उस पर अड़ा था। और इसी बीच कुछ देर बाद वहाँ पे उसके पिता पहुँचते हैं और वो आगे बढ़कर कुणाल को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी बीच कुणाल को बचाने की कोशिश में दोनों के ही पैर फिसल जाते हैं और इसी पहाड़ से करीब 240 से 50 फीट ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं और दोनों की जगहों पर ही मौत हो जाती है। इस घटना के बाद कुछ ही देर बाद, मतलब 4 से 5 सेकंड बाद, उसकी माँ जो जिसका नाम संगीता है वो भी पहाड़ से कूद जाती है और तीनों की जगहों पे मौत हो जाती है।
2: पिताजी वो बेटे को बचाने को गए लेकिन वो भी उनके साथ में नीचे गिर गए। वैसे ये इसके माँ को लग गया है कि बेटा और पिताजी गुजर गए हैं, तो इसलिए उसने ही तुरंत उड़ी मार के आत्महत्या कर दी। इसमें कोशिश में पुलिस ने बहुत प्रयास किए उसका मन परिवर्तन करने के, बचाने के। उसके बाद में फायर ब्रिगेड को बुलाया, फायर ब्रिगेड ने नीचे जाली लगाई और लेकिन जब जाली नीचे से लगाई तो ये जो आत्महत्या करने वाली व्यक्ति बार बार उसका पॉइंट चेंज कर रही थी, इसीलिए वो जाली बार बार साइड को लेना पड़ी और उसने वो मौका देख के वो आत्महत्या कर ली।
0: Well, that story and much more lined up on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.
3: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose.
0: Welcome back. The US-Canada trade deal has collapsed at the final hour, with 50% US tariffs taking effect on certain Canadian goods. Canada is vowing to hit back with matching tariffs, putting auto, steel, aluminium supply chains in the crosshairs.

0: challenges.
1: Well, a day-long marathon meeting at BJP headquarters and BJP extension office with all the newly elected office bearers under Team Nitin Naveen, which ended with the interaction with Prime Minister Narendra Modi at the BJP headquarters, where Prime Minister arrived at around 7:10 p.m. and Prime Minister interacted with the General Secretaries, the newly appointed Vice Presidents and the Mocha Presidents and other office bearers as well. Prime Minister Narendra Modi posted after meeting these office bearers, stating that it was an organizational meeting that he took with comes with great new ideas and also perspectives, aims at strengthening the party and also deepening the connect with people of this country.
2: And the BJP is stepping up its outreach to Gen Z, with party forming a dedicated team to engage with young people across the country. BJP Chief Nitin Naveen will oversee the initiative. Gujarat Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi, BJP General Secretary Smriti Irani, Vinod Tavre and Chhattisgarh Finance Minister OP Chaudhary among those on the team. The outreach will focus on understanding Gen Z's perspective, addressing issues that matter to young Indians. BJP leaders are also expected to visit universities as part of the wider youth engagement drive. So a lot of thrust being put by this new team BJP on the outreach to Gen Z. Now, talking about the Vande Mataram showdown, it has intensified after BJP has passed a 10-point resolution. The resolution was taken at the party meeting chaired by National President Nitin Naveen and attended by the newly appointed National Office Bearers. The BJP leaders recited all six stanzas of the national song. BJP resolution strongly opposes the Congress decision of playing only two stanzas. BJP said that the full national song comprising six stanzas represents India's national consciousness and the legacy of the freedom struggle. Priyank Kharge challenged BJP leaders, including Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah, to sing full Vande Mataram without a teleprompter.
3: ये उनके पार्टी में ऐसा हुआ है और वो बोल रहे हैं कि वंदे मातरम जो नहीं गाते वो देशद्रोही है. देशद्रोही तो वही खुद ही है, क्योंकि वो तो ब्रिटिशर के गुलाम बनना चाहते थे. हमने गुलामी से उनको बाहर निकाला. अरे आओ भाई, आजादी में हम लाए हैं, तुम डेमोक्रेसी में ठहर ठहर के मंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो. ये हक किसने दिलाया? हमने दिलाया.
4: वंदे मातरम इज अ टैक्टिक टू डाइवर्ट फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू, इकोनॉमिक इश्यू. व्हाट इज द रुपी वर्सेस डॉलर रेट नाउ? 98 rupees. This is what they are doing. The US trade deal, where we have to buy 500 billion, I guess, dollars worth of goods from America. All this is to divert that. Let Mr. Amit Shah and Mr. Modi go to Nagpur and tell Mohan Bhagwatji, ensure that Vande Mataram is sung in all RSS shakhas. And I challenge Mr. Amit Shah and Mr. Modi and the entire BJP cabinet, without teleprompter, let them sing our national song fully, including the last two stanzas. I will only resign them.
5: भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के प्रत्येक गली नुक्कड़ कोने में जाकर वंदे मातरम का यशोगान करेगा. वंदे मातरम के विषय में लोगों को हम बताएंगे. वंदे मातरम को लेकर जिस प्रकार की कुलच्छित राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसको लेकर हम आंदोलन खड़ा करेंगे. जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने वंदे मातरम को एक एंटी इंपीरियलिस्टिक क्राई कहा था, उस विषय को हम जनता के सामने रखेंगे.
6: ये वंदे मातरम को बहुत बैकलैश हुआ है. वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे. ये जब उन लोगों ने ऐलान किया, रेजोल्यूशन पास किया, तब बहुत बड़ा बैकलैश हुआ है. जनता के मन में आक्रोश पैदा हुआ है. तो ये आक्रोश डाइवर्ट करने के लिए, इशू डाइवर्ट करने के लिए पूरा ड्रामाबाजी है. इसमें कोई तथ्य नहीं है. और एक अपोजिशन लीडर पुलिस स्टेशन में जाके अगर नहीं करते तो बहुत अलग अलग रास्ता है, अलग अलग इसके लिए वेज एंड मीन्स है. ये सब छोड़ के धरना पर बैठना, अटेंशन ड्रॉ करना, और अभी भी मैं एक्टिव हूँ ये दिखाने के लिए। शायद वो अभी शायद फॉरेन जाते होंगे क्योंकि सेशन खत्म हुआ है, वो फॉरेन जाने से पहले थोड़ा ड्रामाबाजी करके

0: वही पहाड़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये वही पहाड़ है जिससे इस कुणाल चांदगुड़े नाम के लड़के ने अपनी जान देने के लिए यहाँ पहुँचा था। इस सब कहानी की शुरुआत होती है एक आईफोन से लेकर। कुणाल ने कुछ दिन पहले एक आईफोन लिया था और वो आईफोन यूज़ करते वक्त उसकी जो किस्ती थी वो भरने की उसकी परेशानी हो रही थी। इसी को लेकर उसके पिताजी से उसकी बहस हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि कल सुबह 10:30 बजे कुणाल अपने घर से अपनी जान देने के लिए इसी छत्रपति संभाजी नगर के वालूज परिसर के एक खौड़ा जो पहाड़ है वहाँ पे पहुँचा। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हुए और कुणाल की माँ जो संगीता है वो भी यहाँ पे पहुँची। करीब 10:30 से 11 बजे तक यहाँ पे कुछ लोग ज़्यादा इकट्ठा हो गए और उसके बाद दोपहर के 12:30 से 1 बजे तक यानी 3 घंटे के करीब कुणाल को समझाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कुणाल इसी पहाड़ के वो जो लास्ट मूवमेंट पे लास्ट जो आखिरी कोना है वहाँ पर खड़ा था और अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच उसको कई बार उसकी माँ ने रोते हुए समझाया कि ये कोशिश मत कर, हम जो भी है प्रॉब्लम बैठ कर सॉल्व करेंगे। लेकिन कुणाल अपनी जान देने की जो उसने ठान ली थी उस पर अड़ा था। और इसी बीच कुछ देर बाद वहाँ पे उसके पिता पहुँचते हैं और वो आगे बढ़कर कुणाल को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी बीच कुणाल को बचाने की कोशिश में दोनों के ही पैर फिसल जाते हैं और इसी पहाड़ से करीब 240 से 50 फीट ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं और दोनों की जगहों पे ही मौत हो जाती है। इस घटना के बाद कुछ ही देर बाद मतलब 4 से 5 सेकंड बाद उसकी माँ जो जिसका नाम संगीता है वो भी पहाड़ से कूद जाती है और तीनों की जगहों पे मौत हो जाती है।
1: पिताजी वो बेटे को बचाने को गए लेकिन वो भी उनके साथ में नीचे गिर गए। वैसे ये इसके माँ को लग गया है कि बेटा और पिताजी गुजर गए हैं, तो इसलिए उसने ही तुरंत उड़ी मार के आत्महत्या कर दी। इसमें कोशिश में पुलिस ने बहुत प्रयास किए उसका मन परिवर्तन करने के, बचाने के। उसके बाद में फायर ब्रिगेड को बुलाया, फायर ब्रिगेड ने नीचे जाली लगाई और लेकिन जब जाली नीचे से लगाई तो ये जो आत्महत्या करने वाली व्यक्ति बार बार उसका पॉइंट चेंज कर रही थी, इसीलिए वो जाली बार बार साइड को लेना पड़ी और उसने वो मौका देख के वो आत्महत्या कर ली।
2: Well, that story and much more lined up on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.

0: ही पहाड़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये वही पहाड़ है जिससे इस कुणाल चांदगुड़े नाम के लड़के ने अपनी जान देने के लिए यहाँ पहुँचा था। इस सब कहानी की शुरुआत होती है एक आईफोन से लेकर। कुणाल ने कुछ दिन पहले एक आईफोन लिया था और वो आईफोन यूज़ करते वक्त उसकी जो किश्ती थी वो भरने की उसकी परेशानी हो रही थी। इसी को लेकर उसके पिताजी से उसकी बहस हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि कल सुबह 10:30 बजे कुणाल अपने घर से अपनी जान देने के लिए इसी छत्रपति संभाजी नगर के वालूज परिसर के एक खौड़ा जो पहाड़ है वहाँ पे पहुँचा। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हुए और कुणाल की माँ जो संगीता है वो भी यहाँ पे पहुँची। करीब 10:30 से 11 बजे तक यहाँ पे कुछ लोग ज़्यादा इकट्ठा हो गए और उसके बाद दोपहर के 12:30 से 1 बजे तक यानी 3 घंटे के करीब कुणाल को समझाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कुणाल इसी पहाड़ के वो जो लास्ट मूवमेंट पे लास्ट जो आखिरी कोना है वहाँ पर खड़ा था और अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच उसको कई बार उसकी माँ ने रोते हुए समझाया कि ये कोशिश मत कर, हम जो भी है प्रॉब्लम बैठ कर सॉल्व करेंगे। लेकिन कुणाल अपनी जान देने की जो उसने ठान ली थी उस पर अड़ा था। और इसी बीच कुछ देर बाद वहाँ पे उसके पिता पहुँचते हैं और वो आगे बढ़कर कुणाल को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी बीच कुणाल को बचाने की कोशिश में दोनों के ही पैर फिसल जाते हैं और इसी पहाड़ से करीब 240 से 50 फीट ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं और दोनों की जगहों पे ही मौत हो जाती है। इस घटना के बाद कुछ ही देर बाद मतलब 4 से 5 सेकंड बाद उसकी माँ जो जिसका नाम संगीता है वो भी पहाड़ से कूद जाती है और तीनों की जगहों पे मौत हो जाती है।
1: पिताजी वो बेटे को बचाने को गए लेकिन वो भी उनके साथ में नीचे गिर गए। वैसे ये इसके माँ को लग गया है कि बेटा और पिताजी गुजर गए हैं, तो इसलिए उसने ही तुरंत उड़ी मार के आत्महत्या कर दी। इसमें कोशिश में पुलिस ने बहुत प्रयास किए उसका मन परिवर्तन करने के, बचाने के। उसके बाद में फायर ब्रिगेड को बुलाया, फायर ब्रिगेड ने नीचे जाली लगाई और लेकिन जब जाली नीचे से लगाई तो ये जो आत्महत्या करने वाली व्यक्ति बार बार उसका पॉइंट चेंज कर रही थी, इसीलिए वो जाली बार बार साइड को लेना पड़ी और उसने वो मौका देख के वो आत्महत्या कर ली।
2: Well, that story and much more lined up on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.
3: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change.
2: Welcome back. The US-Canada trade deal has collapsed at the final hour, with 50% US tariffs taking effect on certain Canadian goods. Canada is vowing to hit back with matching tariffs, putting auto, steel, aluminium supply chains in the crosshairs. Nearly $900 billion in annual trade at stake. This could have consequences for businesses, jobs, consumers on both sides of the border. Here's a special report.
4: Washington and Ottawa have failed to reach an agreement to avert new U.S. tariffs on Canadian goods. The duties set at 50% were originally due to kick in on Wednesday, but delayed them by 3 days, giving negotiators more time to reach a breakthrough. But that deadline has now passed. U.S. Trade Representative James Greer says Washington had offered tariff reductions in key sectors, including steel and aluminium. But Canada rejected the final terms. Carney says last-minute changes from Washington made the proposed deal unfair and economically unacceptable. And Canada is now promising a tough response. And the stakes are particularly high for Canada,

0: an organizational meeting that he took with comes with great new ideas and also perspectives, aims at strengthening the party and also deepening the connect with people of this country.
1: And the BJP is stepping up its outreach to Gen Z, with party forming a dedicated team to engage with young people across the country. BJP Chief Nitin Naveen will oversee the initiative. Gujarat Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi, BJP General Secretary Smriti Irani, Vinod Tavre and Chhattisgarh Finance Minister O.P. Chaudhary among those on the team. The outreach will focus on understanding Gen Z's perspective, addressing issues that matter to young Indians. BJP leaders are also expected to visit universities as part of the wider youth engagement drive. So a lot of thrust being put by this new team, BJP, on the outreach to Gen Z. Now, talking about the Vande Mataram showdown, it has intensified after BJP has passed a 10-point resolution. The resolution was taken at the party meeting chaired by National President Nitin Naveen and attended by the newly appointed National Office Bearers. The BJP leaders recited all six stanzas of the national song. BJP resolution strongly opposes the Congress decision of playing only two stanzas. BJP said that the full national song comprising six stanzas represents India's national consciousness and the legacy of the freedom struggle. Priyanka Kharge challenged BJP leaders, including Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah, to sing full Vande Mataram without a teleprompter.
2: ये उनके पार्टी में ऐसा हुआ है और वो बोल रहे हैं कि वंदे मातरम जो नहीं गाते वो देशद्रोही है. देशद्रोही तो वो ही खुद ही है, क्योंकि वो तो ब्रिटिशर के गुलाम बनना चाहते थे. हमने गुलामी से उनको बाहर निकाला. अरे आओ भाई, आजादी में हम लाए हैं, तुम डेमोक्रेसी में ठहर ठहर के मंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो. ये हक किसने दिलाया? हमने दिलाया.
3: वंदे मातरम इज अ टैक्टिक टू डाइवर्ट फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू, इकोनॉमिक इश्यू. व्हाट इज द रुपी वर्सेस डॉलर रेट नाउ? 98 rupees. This is what they are doing. The US trade deal, where we have to buy 500 billion, I guess, dollars worth of goods from America. All this is to divert that. Let Mr. Amit Shah and Mr. Modi go to Nagpur and tell Mohan Bhagwatji, ensure that Vande Mataram is sung in all RSS shakhas, and I challenge Mr. Amit Shah and Mr. Modi and the entire BJP cabinet, without teleprompter, let them sing our national song fully, including the last two stanzas. I will only resign them.
4: भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के प्रत्येक गली नुक्कड़ कोने में जाकर वंदे मातरम का यशोगान करेगा. वंदे मातरम के विषय में लोगों को हम बताएंगे. वंदे मातरम को लेकर जिस प्रकार की कुलच्छित राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसको लेकर हम आंदोलन खड़ा करेंगे. जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने वंदे मातरम को एक एंटी इंपेरियलिस्टिक क्राई कहा था, उस विषय को हम जनता के सामने रखेंगे.
5: ये वंदे मातरम को बहुत बैकलैश हुआ है. वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे. ये जब उन लोगों ने ऐलान किया, रेजोल्यूशन पास किया, तब बहुत बड़ा बैकलैश हुआ है. जनता के मन में आक्रोश पैदा हुआ है. तो ये आक्रोश डाइवर्ट करने के लिए, इशू डाइवर्ट करने के लिए पूरा ड्रामाबाजी है. इसमें कोई तथ्य नहीं है. और एक अपोजिशन लीडर पुलिस स्टेशन में जाके अगर नहीं करते तो बहुत अलग अलग रास्ता है, अलग अलग इसके लिए वेज एंड मीन्स है. ये सब छोड़ के धरना पर बैठना, अटेंशन ड्रॉ करना, और अभी भी मैं एक्टिव हूँ ये दिखाने के लिए. शायद वो अभी शायद फॉरेन जाते होंगे, क्योंकि सेशन खत्म हुआ है. वो फॉरेन जाने से पहले थोड़ा ड्रामाबाजी करके जो 15-20 दिन, कभी वो 20-30 दिन जाते हैं ना फॉरेन, किसी को भी नहीं बताते हैं, उसका एब्सेंस ही तुरंत फील नहीं होना. वो एजिटेशन किया था, कहते यही मन में लोग रखते हैं, ऐसे भ्रम में, ये अपने ही भ्रमालोक में रहते हुए ये सब करते हैं.
1: Telangana Chief Minister Revant Reddy's proposed US visit has triggered a political row after Ministry of External Affairs denied clearance for the program. The MEA said that the visits by chief ministers require political clearance and the proposed US program was not considered appropriate for the office held and the purpose of the visit. The ministry, however, clarified that Reddy's UK visit

0: ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಆಂಧ್ರ ಜನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು NRIs ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಆಂಧ್ರದವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇವೆ, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ, UKಗೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡ್ಬೋದು ಅಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಡಿನೈ ಮಾಡೋದು ಇದು ಅನ್ಯಾಯ.
1: Let me say that the visit of chief ministers, as indeed of other dignitaries, are assessed by the Ministry of External Affairs in order to accord political clearance. The program proposed in such cases should be appropriate to the office held and the purpose of the visit. In this particular case, that was not so in respect of the United States, and therefore the clearance was denied, not given. Incidentally, let me also tell you that clearance was given for his visit to the United Kingdom.
2: देखिए भाई, चीफ मिनिस्टर को क्लियरेंस लेकर फ्लाइट चढ़ के बाद में जाना है, ये पहले ही भाग गए, नंबर वन. नंबर टू, इनके टूर प्रोग्राम में उनके CM ऑफिस के हिसाब से ये जो भी इंस्टीट्यूशंस को मिल रहे थे, ब्लेवेंटिक करके एक स्कूल है ऑक्सफोर्ड में, वो देश में NTCAA राइट्स को फंडिंग किए सो इंस्टीट्यूशन है. अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का, उसके अगेंस्ट में फंडिंग किए सो है. देश में खेओस और यहाँ पर जो पीस को डिस्टर्ब करने का जो भी कार्यक्रम होगा, ये सब के लिए वो फंडिंग करते हैं. मोदी जी के खिलाफ प्रोपागंडा करने में फंडिंग करते हैं. बेसिकली ये एंटी इंडिया, एंटी नेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनके मीटिंग शेड्यूल हुए थे, वो क्यों हुए, किस कारण हुए, ये चीफ मिनिस्टर को बताना चाहिए.
3: Government of India rejecting permission to Chief Minister Revanth Reddy for his foreign visit to United States of America, and Ministry of External Affairs terming it as inappropriate, raises serious questions here in people of Telangana. What could be so inappropriate for the Chief Minister Revanth Reddy's visit to the USA? Last time when Chief Minister Revanth Reddy visited United States of America, he signed a 1,000 crore MOU with his own brother, Anumula Jagdishwar Reddy's shell company, Swachh Bio, for 1,000 crores. This was raised with the ED that how can a chief minister travel to United States of America and sign a MOU in his official visit with his own brother's company? Is it not misuse of office? Is it not corruption?
4: A heartbreaking tragedy in Maharashtra, where a family of three died trying to save their 18-year-old son, the teen threatening to take his own life. He stood on the edge of a hill for nearly 3 hours. His parents, villagers, police personnel, everyone repeatedly tried to persuade him to step away from the edge of the cliff. But as the teenager moved closer, his father climbed up and tried to pull him back. The two lost their balance, fell from the hill. Moments later, a panic-stricken mother also fell. As per the reports, an iPhone EMI became the trigger for the tragedy. The teenager was struggling to arrange money for the monthly installment, leading to an argument with his father. All three unfortunately died in the tragic incident at the Khavra Hill in Chhatrapati Sambhaji Nagar. Their pet at home is still awaiting their return.
5: वही पहाड़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये वही पहाड़ है जिससे इस कुणाल चांदगुड़े नाम के लड़के ने अपनी जान देने के लिए यहाँ पहुँचा था. इस सब कहानी की शुरुआत होती है एक आईफोन से लेकर. कुणाल ने कुछ दिन पहले एक आईफोन लिया था और वो आईफोन यूज़ करते वक्त उसकी जो किश्ती थी वो भरने की उसकी परेशानी हो रही थी. इसी को लेकर उसके पिताजी से उसकी बहस हुई. विवाद इतना बढ़ गया कि कल सुबह 10:30 बजे कुणाल अपने घर से अपनी जान देने के लिए इसी छत्रपति संभाजी नगर के

0: आलूज परिसर के एक खौड़ा जो पहाड़ है वहां पे पहुंचा। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हुए और कुणाल की माँ जो संगीता है वो भी यहाँ पे पहुंची। करीब 10:30 से 11 बजे तक यहाँ पे कुछ लोग ज़्यादा इकट्ठा हो गए और उसके बाद दोपहर के 12:30 से 1 बजे तक यानी 3 घंटे के करीब कुणाल को समझाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कुणाल इसी पहाड़ के वो जो लास्ट मूवमेंट पे लास्ट जो आखिरी कोना है वहाँ पर खड़ा था और अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच उसको कई बार उसकी माँ ने रोते हुए समझाया कि ये कोशिश मत कर, हम जो भी है प्रॉब्लम बैठ कर सॉल्व करेंगे। लेकिन कुणाल अपनी जान देने की जो उसने ठान ली थी उस पर अड़ा था। और इसी बीच कुछ देर बाद वहाँ पे उसके पिता पहुँचते हैं और वो आगे बढ़कर कुणाल को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी बीच कुणाल को बचाने की कोशिश में दोनों के ही पैर फिसल जाते हैं और इसी पहाड़ से करीब 240 से 50 फीट ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं और दोनों की जगहों पे ही मौत हो जाती है। इस घटना के बाद कुछ ही देर बाद मतलब 4 से 5 सेकंड बाद उसकी माँ जो जिसका नाम संगीता है वो भी पहाड़ से कूद जाती है और तीनों की जगहों पे मौत हो जाती है।
1: पिताजी वो बेटे को बचाने को गए लेकिन वो भी उनके साथ में नीचे गिर गए। वैसे ये इसके माँ को लग गया है कि बेटा और पिताजी गुजर गए हैं, तो इसलिए उसने ही तुरंत उड़ी मार के आत्महत्या कर दी। इसमें कोशिश में पुलिस ने बहुत प्रयास किए उसका मन परिवर्तन करने के, बचाने के। उसके बाद में फायर ब्रिगेड को बुलाया, फायर ब्रिगेड ने नीचे जाली लगाई और लेकिन जब जाली नीचे से लगाई तो ये जो आत्महत्या करने वाली व्यक्ति बार बार उसका पॉइंट चेंज कर रही थी, इसीलिए वो जाली बार बार साइड को लेना पड़ी और उसने वो मौका देख के वो आत्महत्या कर ली।
2: Well, that story and much more lined up on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.
3: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored.
2: Welcome back. The US-Canada trade deal has collapsed at the final hour, with 50% US tariffs taking effect on certain Canadian goods. Canada is vowing to hit back with matching tariffs, putting auto, steel, aluminium supply chains in the crosshairs. Nearly $900 billion in annual trade at stake. This could have consequences for businesses, jobs, consumers on both sides of the border. Here's a special report.
4: Washington and Ottawa have failed to reach an agreement to avert new U.S. tariffs on Canadian goods. The duties set at 50% were originally due to kick in on Wednesday, but delayed them by 3 days, giving negotiators more time to reach a breakthrough. But that deadline has now passed. U.S. Trade Representative James Greer says Washington had offered tariff reductions in key sectors, including steel and aluminium. But Canada rejected the final terms. Carney says last-minute changes from Washington made the proposed deal unfair and economically unacceptable. And Canada is now promising a tough response. And the stakes are particularly high for Canada. U.S. accounts for around 70% of Canadian exports. So this is far more than a diplomatic spat. a prolonged trade war could hit factories, jobs, and supply chains, while

0: airheads. So therefore, cab operators, tour operators actually take away the chunk of the tourists. So therefore, now the fact that both Assam and Meghalaya has decided that they will form a joint committee with all the stakeholders involved from both states in terms of better tourist management. Now, this is going to be very crucial because remember, what Meghalaya and Assam would also try to do is to develop a new tourist circuit involving Kaziranga National Park of Assam, the famous Kamakhya Temple in Guwahati, and obviously Shillong and Cherrapunji or Sora as it is now known as. So therefore, perhaps this kind of approach might ensure that incidents like this don't take place in future.
1: All right. Thank you so much, Ratnadeep, for joining us on the broadcast, giving us all that perspective on what's happening between the two states. And of course, the next few weeks, as I said, are going to be very, very important. Some more latest news coming in. Let's cut across to that. And this is an FIR that has been filed against Cockroach Janata Party Chief Abhijit Deepke for unauthorized entry into government school. Police have registered an FIR against Cockroach Janata Party Chief Abhijit Deepke and party worker Ajinkya Shinde for allegedly entering a Zilla Parishad school in Ausa town in Latur in Maharashtra without permission of obstructing government work. The case relates to Deepke's visit to the school on the 20th of August, during which he reportedly conducted an inspection of the premises. According to police, Deepke and his associate entered the school without prior authorization, interfered with the functioning of government officials and staff. Prajakta with us on the broadcast. Prajakta, who is the complainant in this case? Has this been taken up by the police suo motu on their own accord? Because this is a cognizable offence and the police doesn't really require a complainant in this case.
2: The school authority filed this FIR and on 20th August that Abhijit Deepke, the founder of Cockroach Janata Party, has made a serious allegation after conducting a surprise inspection in government school in Latur, Ausa area. He went there and claimed that empty liquor bottles were found in the school premises. Even he claimed that the school rented students brought in to make school feel like functioning during the inspection, and after that he posted a video on social media and it went viral. After this visit, that inspection, that FIR has been filed against Deepke and his party workers, and now police will take an action against him and his party workers. That FIR is about the entering into the ZP school, Zilla Parishad school, without permission, and that interfering in the government official work. Now that they will take action against him. School authority has filed FIR against him.
1: All right. Thank you for clarifying that, Prajakta. Thank you for getting us all those details on that very important story. BJP's new team, Nitin Naveen's team, met Prime Minister Modi at the party headquarters, with women leaders taking the front row in the photo op, as you can see in those visuals. This was the first interaction between the team and Prime Minister Modi. Prime Minister has spelled out the focus of the meeting: fresher ideas, stronger organization, deeper connect with the people, calling it a valuable interaction with party colleagues. BJP's roadmap is clear: strengthen the organization ahead of the polls, expand the grassroots and youth outreach, widen its social reach and prepare the new team for the upcoming political challenges.
3: Well, a day-long marathon meeting at BJP headquarters and BJP extension office with all the newly elected office bearers under team Nitin Naveen, which ended with the interaction with Prime Minister Narendra Modi at the BJP headquarters, where Prime Minister arrived at around 7:10 p.m. and Prime Minister interacted with the general secretaries, the newly appointed vice presidents and the Mocha presidents and other office bearers as well. Prime Minister Narendra Modi posted after meeting these office bearers, stating that it was an organizational meeting that he took with comes with great new ideas and also perspectives, aims at strengthening the party and also deepening the connect with people of this country.
1: And the BJP is stepping up its outreach to Gen Z, with party forming a dedicated team to engage with young people across the country. BJP Chief Nitin Naveen will oversee the initiative. Gujarat Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi, BJP General Secretary Smriti Irani, Vinod Tavre, and Chhattisgarh Finance Minister OP Chaudhary among those on the team. The outreach will focus on understanding Gen Z's perspective, addressing issues that matter to young Indians. BJP leaders are also expected to visit universities as part of the wider youth engagement drive. So a lot of thrust being put by this new team BJP on the outreach to Gen Z. Now, talking about the Vande Mataram showdown, it has intensified after BJP has passed a 10-point resolution. The resolution was taken at the party meeting chaired by National President Nitin Naveen and attended by the newly appointed National Office Bearers. The BJP leaders recited all six stanzas of the national song. BJP resolution strongly opposes the Congress decision of playing only two stanzas. BJP said that the full national song comprising six stanzas represents India's national consciousness and the legacy of the freedom struggle. Priyank Kharge challenged BJP leaders, including Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah, to sing full Vande Mataram without a teleprompter.
4: ये उनके पार्टी में ऐसा हुआ है और वो बोल रहे हैं कि वंदे मातरम जो नहीं गाते वो देशद्रोही है. देशद्रोही तो वही खुद ही है, क्योंकि वो तो ब्रिटिशर के गुलाम बनना चाहते थे. हमने गुलामी से उनको बाहर निकाला. अरे आओ भाई, आजादी में हम लाए हैं, तुम डेमोक्रेसी में ठहर ठहर के मंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो. यह हक किसने दिलाया? हमने दिलाया.
5: वंदे मातरम इज अ टैक्टिक टू डाइवर्ट फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू, इकोनॉमिक इश्यू. व्हाट इज द रुपी वर्सेस डॉलर रेट नाउ? 98 rupees. This is what they are doing. The US trade deal, where we have to buy 500 billion, I guess, dollars worth of goods from America. All this is to divert that. Let Mr. Amit Shah and Mr. Modi go to Nagpur and tell Mohan Bhagwatji, ensure that Vande Mataram is sung in all RSS shakhas. And I challenge Mr. Amit Shah and Mr. Modi and the entire BJP cabinet, without teleprompter, let them sing our national song fully, including the last two stanzas. I will only resign then.
6: भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के प्रत्येक गली नुक्कड़ कोने में जाकर वंदे मातरम का यशोगान करेगा. वंदे मातरम के विषय में लोगों को हम बताएंगे. वंदे मातरम को लेकर जिस प्रकार की कुलच्छित राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसको लेकर हम आंदोलन खड़ा करेंगे. जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने वंदे मातरम को एक एंटी इंपेरियलिस्टिक क्राय कहा था, उस विषय को हम जनता के सामने रखेंगे.
7: ये वंदे मातरम को बहुत बैकलैश हुआ है. वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे. ये जब उन लोगों ने ऐलान किया, रेजोल्यूशन पास किया, तब बहुत बड़ा बैकलैश हुआ है. जनता के मन में आक्रोश पैदा हुआ है. तो ये आक्रोश डाइवर्ट करने के लिए, इशू डाइवर्ट करने के लिए पूरा ड्रामाबाजी है. इसमें कोई तथ्य नहीं है. और एक अपोजिशन लीडर पुलिस स्टेशन में जाके अगर नहीं करते तो बहुत अलग अलग रास्ता है, अलग अलग इसके लिए वेज एंड मीन्स है. ये सब छोड़ के धरना पर बैठना, अटेंशन ड्रॉ करना, और अभी भी मैं एक्टिव हूँ ये दिखाने के लिए. शायद वो अभी शायद फॉरेन जाते होंगे, क्योंकि सेशन खत्म हुआ है. वो फॉरेन जाने से पहले थोड़ा ड्रामाबाजी करके जो 15-20 दिन, कभी वो 20 दिन 30 दिन जाते हैं ना फॉरेन, किसी को भी नहीं बताते हैं, उसका एब्सेंस ही तुरंत फील नहीं. उन्होंने वो एजिटेशन किया था, कहते यही मन में लोग रखते हैं, ऐसे भ्रम में ये अपने ही भ्रमालोक में रहते हुए ये सब करते हैं.
1: Telangana Chief Minister Revanth Reddy's proposed US visit has triggered a political row after Ministry of External Affairs denied clearance for the program. The MEA said that the visits by chief ministers require political clearance and the proposed US program was not considered appropriate for the office held and the purpose of the visit. The ministry, however, clarified that Reddy's UK visit has been cleared. The BJP has questioned why chief ministers' proposed meetings included institution it alleges to have links, activities opposing India's interests, and also his meet with the Oxford professor Maya Tudor. Revanth Reddy, meanwhile, hit back at the political criticism, saying that the future of the youth development and nation building should remain above politics and electoral considerations.
4: Matu Telangana Andhra Jana Visheshwagi America Dali Balas to the NRI Jana Auru Illi Nadru Invest Madhavekadre. ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಆಂಧ್ರದವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇವೆ, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ, ಯುಕೆಗೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡ್ಬೋದು ಅಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಡಿನೈ ಮಾಡೋದು ಇದು ಅನ್ಯಾಯ.
8: ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ದಟ್ ದ ವಿಸಿಟ್ ಆಫ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಡೀಡ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಆರ್ assessed by the Ministry of External Affairs in order to accord political clearance. The program proposed in such cases should be appropriate to the office held and the purpose of the visit. In this particular case, that was not so in respect of the United States, and therefore the clearance was denied, not given. Incidentally, let me also tell you that clearance was given for his visit to the United Kingdom.
9: देखिए भाई, चीफ मिनिस्टर को क्लियरेंस लेकर फ्लाइट चढ़ के बाद में जाना है, ये पहले ही भाग्य है, नंबर वन. नंबर टू, इनके टूर प्रोग्राम में उनके सीएम ऑफिस के हिसाब से ये जो भी इंस्टीट्यूशंस को मिल रहे थे, ब्लेवेंटिक करके एक स्कूल है ऑक्सफोर्ड में, वो देश में एंटी सीएए राइट्स को फंडिंग किया सो इंस्टीट्यूशन है. अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का, उसके अगेंस्ट में फंडिंग किया सो है. देश में खेओस और यहाँ पर जो पीस को डिस्टर्ब करने का जो भी कार्यक्रम होगा, ये सब के लिए वो फंडिंग करते हैं. मोदी जी के खिलाफ प्रोपागंडा करने में फंडिंग करते हैं. बेसिकली ये एंटी इंडिया, एंटी नेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनके मीटिंग शेड्यूल हुए थे, वो क्यों हुए, किस कारण हुए, ये चीफ मिनिस्टर को बताना चाहिए.
10: Government of India rejecting permission to Chief Minister Revanth Reddy for his foreign visit to United States of America, and Ministry of External Affairs terming it as inappropriate, raises serious questions here in people of Telangana. What could be so inappropriate for the Chief Minister Revanth Reddy's visit to the USA? Last time when Chief Minister Revanth Reddy visited United States of America, he signed a 1,000 crore MOU with his own brother, Anumula Jagdishwar Reddy's shell company, Swachh Bio, for 1,000 crores. This was raised with the ED that how can a chief minister travel to United States of America and sign a MOU in his official visit with his own brother's company? Is it not misuse of office? Is it not corruption?
1: A heartbreaking tragedy in Maharashtra, where a family of three died trying to save their 18-year-old son, the teen threatening to take his own life. He stood on the edge of a hill for nearly 3 hours. His parents, villagers, police personnel, everyone repeatedly tried to persuade him to step away from the edge of the cliff. But as the teenager moved closer, his father climbed up and tried to pull him back. The two lost their balance, fell from the hill. Moments later, a panic-stricken mother also fell. As per the reports, an iPhone EMI became the trigger for the tragedy. The teenager was struggling to arrange money for the monthly installment, leading to an argument with his father. All three unfortunately died in the tragic incident at the Khavra Hill in Chhatrapati Sambhajinagar. Their pet at home is still awaiting their return.
11: ये वही पहाड़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये वही पहाड़ है जिससे इस कुणाल चांदगुड़े नाम के लड़के ने अपनी जान देने के लिए यहाँ पहुँचा था। इस सब कहानी की शुरुआत होती है एक आईफोन से लेकर। कुणाल ने कुछ दिन पहले एक आईफोन लिया था और वो आईफोन यूज़ करते वक्त उसकी जो किश्ती थी वो भरने की उसकी परेशानी हो रही थी। इसी को लेकर उसके पिताजी से उसकी बहस हुई, विवाद इतना बढ़ गया कि कल सुबह 10:30 बजे कुणाल अपने घर से अपनी जान देने के लिए इसी छत्रपति संभाजी नगर के वालूज परिसर के एक खौड़ा जो पहाड़ है वहाँ पे पहुँचा। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हुए और कुणाल की माँ जो संगीता है वो भी यहाँ पे पहुँची। करीब 10:30 से 11 बजे तक यहाँ पे कुछ लोग ज़्यादा इकट्ठा हो गए और उसके बाद दोपहर के 12:30 से 1 बजे तक यानी 3 घंटे के करीब कुणाल को समझाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कुणाल इसी पहाड़ के वो जो लास्ट मूवमेंट पे, लास्ट जो आखिरी कोना है वहाँ पर खड़ा था और अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच उसको कई बार उसकी माँ ने रोते हुए समझाया कि ये कोशिश मत कर, हम जो भी है प्रॉब्लम बैठ कर सॉल्व करेंगे। लेकिन कुणाल अपनी जान देने की जो उसने ठान ली थी उस पर अड़ा था। और इसी बीच कुछ देर बाद वहाँ पे उसके पिता पहुँचते हैं और वो आगे बढ़कर कुणाल को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी बीच कुणाल को बचाने की कोशिश में दोनों के ही पैर फिसल जाते हैं और इसी पहाड़ से करीब 240 से 50 फीट ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं और दोनों की जगहों पे ही मौत हो जाती है। इस घटना के बाद कुछ ही देर बाद, मतलब 4 से 5 सेकंड बाद, उसकी माँ जो जिसका नाम संगीता है वो भी पहाड़ से कूद जाती है और तीनों की जगहों पे मौत हो जाती है।
12: पिताजी वो बेटे को बचाने को गए लेकिन वो भी उनके साथ में नीचे गिर गए। वैसे ये इसके माँ को लग गया है कि बेटा और पिताजी गुजर गए हैं, तो इसलिए उसने ही तुरंत उड़ी मार के आत्महत्या कर दी। इसमें कोशिश में पुलिस ने बहुत प्रयास किए उसका मन परिवर्तन करने के, बचाने के। उसके बाद में फायर ब्रिगेड को बुलाया, फायर ब्रिगेड ने नीचे जाली लगाई और लेकिन जब जाली नीचे से लगाई तो ये जो आत्महत्या करने वाली व्यक्ति बार बार उसका पॉइंट चेंज कर रही थी, इसीलिए वो जाली बार बार साइड को लेना पड़ी और उसने वो मौका देख के वो आत्महत्या कर ली।
1: Well, that story and much more lined up on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.